सफर फिल्म से ये गीत था पन्नाटे का गाया हुआ। इंदिवर की रचना थी और कल्याण जी आनंद जी का संगीत। सही में दोस्तों, हमें चलना तो पड़ेगा ही, मंजिल तभी तो मिलती है।

दोस्तों सच में जो मेहनत करता है उसे फल तो मिलता ही है, और उसकी मेहनत के पीछे बहुत से त्याग होते हैं। इंसाफ फिल्म से रचना आपने सुनी अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में, फारूक कैसर की रचना थी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। अगली रचना आप सुनेंगे गुमनाम फिल्म से, लता मंगेशकर की गाई हुई है, हंसरजयपुरी।

दोस्तों, हमें केवल वही बातें याद रह जाती हैं जो हमारे संगी साथी होते हैं, और उनसे भोलेपन का साथ और जो सच्चा रिश्ता उनके साथ होता है, बचपन की यादें हर किसी के साथ जुड़ी होती हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, चाहते हुए भी हम उन लम्हों को बटोर नहीं पाते।

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहां आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने प्रमुख क्षेत्रों में व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी और प्रगाढ़ करने के उपायों पर चर्चा की। राष्ट्रगीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ हर घर तिरंगा अभियान आज से देश भर में शुरू। मद्रास, कलकत्ता, मध्य प्रदेश और कर्नाटक उच्च न्यायालयों में 30 न्यायाधीशों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी। वर्षा के कारण पहलगाम और बालतल मार्गों से श्री अमरनाथ जी यात्रा अस्थायी रूप से स्थगित। मौसम विभाग का उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में आज तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट। और साग्निक रॉय और सायंतन कुशारी ने 9वीं वर्ल्ड यूथ ट्रांसनेशनल चैंपियनशिप के अंडर 31 स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अमरीका के उपराष्ट्रपति जीडी वेंस से टेलीफोन पर बातचीत की। इस दौरान दोनों नेताओं ने भारत अमरीका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों, ऊर्जा सुरक्षा तथा महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। आपसी हित से जुड़े क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। श्री मोदी ने उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और उनकी पत्नी उषा वेंस को उनके पुत्र के जन्म पर शुभकामनाएं दी। हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू हो रहा है। यह अभियान 17 तारीख तक चलेगा। इसका उद्देश्य लोगों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है।
5: घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा।
6: हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत वर्ष 2022 में हुई थी और अब ये एक बड़े जन भागीदारी अभियान का रूप ले चुका है। इस वर्ष हर घर तिरंगा अभियान का विशेष महत्व है क्योंकि ये राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ मनाया जा रहा है। देश भर में वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी होगा।

14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाएगा। दुनिया भर में 200 से अधिक भारतीय दूतावास, उच्चायोग और वाणिज्यिक दूतावास भी अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित करेंगे। इस वर्ष सूर्यपथ तिरंगा डिजिटल रिले भी आयोजित होगी। इसमें 54 भारतीय राजनयिक मिशन और केंद्र हिस्सा लेंगे। ये रिले 15 अगस्त को फिजी से शुरू होकर सैन फ्रांसिस्को में समाप्त होगा। समाचार कक्ष से मैं

0: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर पुद्दुचेरी में हैं। श्री शाह गोरीमेडू के पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय में पुद्दुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्रदान करने के समारोह में भाग लेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: गृह मंत्री अमित शाह आज पुडुचेरी पुलिस को औपचारिक झंडा सौंपेंगे। भारत के राष्ट्रपति ने 8 मई को पुडुचेरी पुलिस की असाधारण सेवा, अनुशासन और शानदार उपलब्धियों के सम्मान में उन्हें पुलिस कलर देने की घोषणा की थी। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित औपचारिक परेड में केंद्र शासित प्रदेश पुलिस की विभिन्न शाखाओं के जवान भी भाग ले रहे हैं। इस समारोह में पुडुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाशनाथन, मुख्यमंत्री एन रंगासामी और गृह मंत्री ए नमासीवयम भी मौजूद रहेंगे। दोपहर बाद अमित शाह पुडुचेरी में मुरुगा थिएटर सिग्नल पर हर घर तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। गृह मंत्री के दौरे को देखते हुए पूरे पुडुचेरी में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। विपिन एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमित कुमार त्यागी।
0: आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने राज्य और देश के विकास में प्रत्येक नागरिक की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए 15 अगस्त से राष्ट्र निर्माण में भागीदार कार्यक्रम शुरू करने का आह्वान किया है। श्री नायडू ने कार्यक्रम के अंतर्गत लोगों से 13 से 15 अगस्त तक अपने घरों पर राष्ट्र ध्वज फहराने और मेरा राष्ट्र राष्ट्र सर्वोपरि की भावना को बढ़ावा देने का आह्वान किया है। सरकार ने 4 उच्च न्यायालयों में 30 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी कर दी है। इनमें मद्रास, कलकत्ता, मध्य प्रदेश और कर्नाटक उच्च न्यायालय शामिल हैं। सबसे अधिक 15 न्यायाधीशों की नियुक्ति मद्रास उच्च न्यायालय में की गई है। वहीं कलकत्ता उच्च न्यायालय में 8, कर्नाटक उच्च न्यायालय में 6 और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में 1 न्यायाधीश की नियुक्ति की गई है। विधि और न्याय मंत्रालय के अनुसार इन 30 न्यायाधीशों में 20 वकील और 10 न्यायिक अधिकारी शामिल हैं। इन नियुक्तियों को राष्ट्रपति ने भारत के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय की कलीजियम की सलाह के बाद मंजूरी दी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। झारखंड में JPSC और JSSC भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी गतिरोध अब समाधान की दिशा में बढ़ता दिख रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि सरकार और आंदोलनकारी छात्रों के प्रतिनिधियों के बीच आज दोपहर करीब 12 बजे अगले दौर की वार्ता होने की संभावना है।
2: सरकार के वार्ता दल ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर छात्रों के साथ हुई पहली दौर की बातचीत में हुई प्रगति से उन्हें अवगत कराया है। सरकार और आंदोलनकारी छात्रों के विभिन्न गुटों के बीच पहले दौर की उच्च स्तरीय वार्ता कल रांची के स्टेट गेस्ट हाउस में सकारात्मक माहौल में हुई थी। सरकार के प्रतिनिधियों ने परीक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार के प्रति प्रतिबद्धता जताई। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने एक आधिकारिक फीडबैक ईमेल आईडी भी जारी की है, जिसके माध्यम से छात्र और हितधारक अपने सुझाव दे सकते हैं। इधर छात्र नेता रविंद्र पासवान ने कहा कि छात्र पिछले 15 दिनों से अनिश्चितकाल धरने पर हैं और पहली वार्ता में उन्होंने अपनी मांग विस्तार से सरकार के सामने रखी हैं। इस बीच कल शाम रांची में छात्रों ने JPSC JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के लिए जवाबदेही तय करने की मांग को लेकर फ्लैशलाइट मार्च भी निकाला। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: जम्मू कश्मीर में वर्षा और खराब मौसम के कारण पहलगाम और बालतल मार्गों से श्री अमरनाथ जी यात्रा स्थगित कर दी गई है। मौसम विभाग के अनुमान को देखते हुए यात्रा अस्थायी रूप से रोकी गई है। जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से कल किसी भी नए जत्थे को रवाना नहीं किया गया। इस बीच बालतल आधार शिविर में ठहरे हुए 1202 तीर्थयात्रियों के 28वें जत्थे को 44 वाहनों में जम्मू के लिए रवाना किया गया। श्री अमरनाथ गुफा में कल 3,336 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। इस वर्ष अब तक अमरनाथ यात्रा में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 4,80,019 हो गई है। 57 दिन की अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई को पहलगाम के

0: पारंपरिक चंदनवाड़ी मार्ग और गांधरबल के बालतल मार्ग से एक साथ शुरू हुई थी। यात्रा का समापन 28 अगस्त को पारंपरिक छड़ी मुबारक समारोह के साथ होगा। इस बीच मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी तेज वर्षा की आशंका है। विभाग ने जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, केरलम, माहे, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में गरज चमक और आंधी तूफान की संभावना जताई है। इधर दिल्ली और आसपास के इलाकों में दिन के दौरान हल्की वर्षा और बादल छाए रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के कई जिलों में अगले 48 घंटों में बहुत तेज वर्षा की चेतावनी जारी की है। एक रिपोर्ट।
1: मौसम विभाग के अनुसार आज राज्य के पर्वतीय जिलों में तेज वर्षा की संभावना है। देहरादून, बागेश्वर, नैनीताल और चंपावत में कल भी भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। वहीं उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, टिहरी, पौड़ी, पिथौरागढ़ और उधम सिंह नगर में कहीं कहीं भारी वर्षा का येलो अलर्ट है। मौसम की स्थिति को देखते हुए सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन ने सभी संबंधित जिलों को 24 घंटे सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। श्री सुमन ने प्रदेशवासियों और पर्यटकों से मौसम विभाग की चेतावनी को ध्यान में रखते हुए सावधानी बरतने की अपील की है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: उड़ीसा में भी कई क्षेत्रों में तेज वर्षा जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में बाढ़ के कारण बड़े स्तर पर फसलों को नुकसान होने की आशंका है।
2: उड़ीसा में एक बार फिर बड़े पैमाने पर बारिश हो रही है। IMD ने कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। सुंदरगढ़, संबलपुर, झारसुगड़ा और बरगढ़ जिलों के लिए ऑरेंज वार्निंग जारी की गई है, जबकि राज्य के बाकी हिस्सों के लिए येलो वार्निंग है। भद्रक में बैतरणी और सालंदी नदियों का जलस्तर बढ़ने से यहां निचले और जोखिम वाले इलाकों में रहने वाले लोगों को फिर से बाढ़ आने का डर सता रहा है। अधिकारी स्थिति पर कड़ी नजर रख रहे हैं और जोखिम वाले इलाकों में पूरी तैयारी बनाए हुए हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: चीन के हेफेई में 9वीं वर्ल्ड यूथ ट्रांसनेशनल चैंपियनशिप में भारत के सागनिक रॉय और सायंतन कुशारी की जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीत लिया है। क्रोएशिया की एम फेरेनका और एफ कटुसिच ने दूसरा स्थान और चीन के KJ हान और जेड वांग ने तीसरा स्थान हासिल किया। और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स फाइनल में भारत की अश्मिता चालिहा और चीन की क्यू हान के बीच मुकाबला जारी है। मैच का पहला गेम क्यू हान ने 21-14 से अपने नाम कर लिया है। अमरीकी सरकार विदेशी कर्मचारियों को नई नौकरी खोजने के लिए 60 दिन का अतिरिक्त समय देने वाले नियम को समाप्त करने पर विचार कर रही है। ये प्रस्ताव व्हाइट हाउस के प्रबंधन और बजट कार्यालय के पास है। ये नियम लागू होने पर कई H-1B वीजा धारक कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों को अमरीका छोड़ना पड़ सकता है। इस बदलाव का असर भारतीयों पर भी पड़ सकता है। H-1B वीजा धारकों में भारतीय नागरिकों की बड़ी हिस्सेदारी है। अमेरिका में भारतीय मूल के 52 लाख से अधिक लोग रहते हैं। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
3: धन्यवाद मुकेश। IIT दिल्ली के दीक्षांत समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी बोले, युवा सिर्फ सवाल न पूछें, समाधान भी खोजें, भारत को नए शोध की जरूरत। जनसत्ता की सुर्खी है, बिना सोचे समझे स्वीकार की जाने वाली बातों पर सवाल उठाएं विद्यार्थी। दैनिक जागरण के अनुसार प्रधानमंत्री ने कहा, याद रखिएगा जो सीखेगा वो जीतेगा। जेंजी को PM ने दिया संदेश, कहा पैकेज और नौकरी की तुलना करने से बचे। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, जेंजी के रंग में मोदी, सतपुड़ा के पराठे, हॉस्टल निकनेम के साथ भविष्य की सीख, आरा कारा विंधी जिया सराय का पोहा। पंजाब केसरी ने अकाली भाजपा का गठजोड़ शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, राज्य स्तर पर जब भी पंजाब में अकाली दल के नेतृत्व में प्रकाश सिंह बादल या उनके पुत्र सुखबीर बादल की सरकार बनी, उसमें भाजपा के प्रतिनिधि शामिल हुए, लेकिन अकाली जनसंघ गठजोड़ की इस विरासत में इस दौरान राज्य की बदलती परिस्थितियों के अनुरूप मूलभूत बदलाव भी आते रहे हैं। दैनिक भास्कर का शीर्षक है, हाइब्रिड और EV कारें सस्ती होंगी, ज्यादा प्रदूषण वाली होंगी महंगी, ऑटो इंडस्ट्री में बड़ा बदलाव, नई पॉलिसी अप्रैल 2027 से लागू होंगी। अमर उजाला की सुर्खी है, अंतरिक्ष के कचरे से होगा कारोबार, मलबा हटेगा, उपग्रहों की मरम्मत भी, एस्ट्रोस्केल, क्लियर स्पेस जैसी कंपनियों ने शुरू किया काम। जनसत्ता ने आस्था शीर्षक से विशेष खबर में लिखा है कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा परंपरागत के

0: साथ आधुनिक व्यंजन भी। मुख्यमंत्री योगी ने कहा 4.5 करोड़ कांवड़िए जल लेकर आएंगे, श्रद्धालु अपने इलाके में शिव मंदिरों में जलाभिषेक करेंगे। लोकसत्ता के अनुसार E20 विवाद के बीच सरकारी तेल कंपनियों का दावा, ईंधन पूरी तरह सुरक्षित, न घटेगी माइलेज न खराब होगा इंजन। दैनिक ट्रिब्यून के अनुसार बठिंडा में हनी ट्रैप गिरोह, 23 महिलाओं समेत 28 काबू, वायुसेना अफसर ने पाक को दी सैन्य जानकारी, गिरफ्तार। दैनिक जागरण का शीर्षक है AI ने भारत में जितनी नौकरियां घटाई उससे 2.5 गुना ज्यादा पैदा की। नोमुरा की रिपोर्ट में दावा 83,100 AI से जुड़ी नौकरियां बढ़ी, 31,921 पर पड़ा असर।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंस ने प्रमुख क्षेत्रों में व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी और प्रगाढ़ करने के उपायों पर चर्चा की। राष्ट्रगीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ हर घर तिरंगा अभियान आज से देश भर में शुरू। सरकार ने मद्रास, कलकत्ता, मध्य प्रदेश और कर्नाटक उच्च न्यायालयों में 30 न्यायाधीशों की नियुक्ति को मंजूरी दी। वर्षा के कारण पहलगाम और बालतल मार्गों से श्री अमरनाथ जी यात्रा अस्थायी रूप से स्थगित और साग्निक रॉय और सायंतन कुशारी ने 9वीं वर्ल्ड यूथ ट्रांसनेशनल चैंपियनशिप की अंडर 31 स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम शगुन चोपड़ा। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड US वाइस प्रेसिडेंट JD वेंस डिस्कस वेज टू फर्दर स्ट्रेंथन कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इन की एरियाज। हर घर तिरंगा कैंपेन बिगिंस टुडे, कोइंसाइडिंग विद 150th एनिवर्सरी ऑफ इंडियाज नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम। अपॉइंटमेंट ऑफ 30 जजेस फॉर हाई कोर्ट्स ऑफ मद्रास, कैलकटा, मध्य प्रदेश एंड कर्नाटका नोटिफाइड। Amarnath Yatra to remain suspended from both Pahalgam and Baltal routes due to repair of tracks and forecast of bad weather. IMD issues orange alert for heavy rainfall in Uttarakhand and Chhattisgarh today. Sagnik Roy and Sayantan Kushari win gold medal in under 31 pairs at 9th World Bridge Federation Youth Transnational Championships. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi and US Vice President JD Vance discussed ways to further deepen India-US Comprehensive Global Strategic Partnership across key areas. Mr. Modi received a phone call from Vice President Vance yesterday. In a social media post, Mr. Modi said they noted the sustained momentum in the high-level engagements and reaffirmed their commitment to further strengthening cooperation in trade, defence, critical and emerging technologies, energy security and critical minerals. Both leaders also exchanged views on regional and global developments of mutual interest. Prime Minister Narendra Modi has said new sectors are emerging in the country, offering fresh opportunities for the youth. Addressing the 57th convocation of Indian Institute of Technology, IIT Delhi, yesterday, the Prime Minister cited sectors such as semiconductors, space and drones, and said India is working towards becoming self-reliant across all sectors. Mr. Modi said this drive towards self-reliance will serve as a strong foundation for building a Viksit Bharat.
3: Aaj Bharat economic self-reliance, technological self-reliance, industrial self-reliance, aise har sector mein aatmanirbhar banne ke liye kaam kar raha hai. Yahi Viksit Bharat ki majboot neev ka saboot hai. Is majboot neev par आपको एक भव्य सुंदर विकसित भारत का निर्माण करना है।
2: He further urged the students to keep the national interest at the center of their decisions.
3: आज के इस दौर में हमारे सामने चुनौतियां भी अलग है और इसलिए हमारे दायित्व भी अलग है। अपने जीवन के अगले 30-35 साल में आप जो कुछ भी करेंगे वो विकसित भारत की हमारी यात्रा को प्रभावित करेगा।
2: The Har Ghar Tiranga campaign will begin today and will run through 17th of this month. The initiative is aimed at encouraging citizens to hoist the national flag and participate in activities celebrating patriotism, national unity and India's cultural heritage. The campaign, which began in 2022 as part of the Azadi Ka Amrit Mahotsav celebrations,

0: को संभाले हुए पुदुचेरी की रक्षा, आंतरिक सुरक्षा और पुदुचेरी के सम्मान की रक्षा करने का काम करते हैं।
1: सः अकथयत् यत् यद्यपि पुडुचेरी आरक्षक सेनायां 5,000 न्यूनाः आरक्षकाः सन्ति तथापि केन्द्र शासित प्रदेशस्य सुरक्षायाः आन्तरिक सुरक्षायाः च उत्तरदायित्वं एतेषां हस्तेषु अस्ति। संस्कृत वार्तायाः संस्करणमिदं इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। केन्द्रीय अन्वेषण अभिकरणेन केरल राज्यस्य मलप्पुरम जनपदे अवैध विस्फोटक राशि ग्रहण प्रकरणे अपरः आरोपी निगडितः। संस्थया सूचितं यत् आरोपी गतदिने मलप्पुरम जनपदस्य मंजेरी स्थानात् निगृहितः। अवधेयमिदं यत् असौ मुख्य षड्यंत्रकारीषु अन्यतमः अथ च अस्मिन् प्रकरणे प्राप्तानां विस्फोटक द्रव्याणां अवैध प्राप्तौ सह संलग्नः आसीत्। एतत् निगडनम् एनआईए संस्थया शुक्रवासरे कर्नाटक राज्यस्य विजयपुर स्थानात् त्रयाणाम् अन्य आरोपिणां निगडनानन्तरम् अभवत्, येन अस्मिन् प्रकरणे निगृहीतानां संख्या आहत्य 10 संजाता। नवीनवृष्टया ओडिशा राज्ये पुनः जलाप्लावस्य स्थितिः वर्धिता जाता। राज्यस्य बहवः प्रदेशाः पूर्वमेव जलाप्लावेन दुष्प्रभाविताः सन्ति। इदानीम् अनेकाः नद्यः पुनः जलस्तरवृद्धिं प्राप्नुवन्ति। बालासोर जनपदे जलका नदी अपि च भद्रक जनपदे वैतरणी सालन्दी नद्यः जलस्तरवृद्धिं प्राप्नुवन्ति। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह अद्य प्रोक्तवान यत् ऑपरेशन सिंदूर इति सैन्याभियानेन विश्वपटले एषः संदेशः प्रेषितः यत् भारतं स्वनागरिकाणां सुरक्षायै सहैव देशस्य महिलानां सिंदूरं रक्षितुं यत्किमपि कर्तुं शक्नोति।
2: पहलगाम में धर्म पूछकर हमारे निर्दोष नागरिकों पर कायराना आतंकी हमला हुआ था, तो उसके बाद हमारी बहादुर सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत की थी। हमने पाकिस्तान में बैठे आतंकियों और उनके सरपरस्तों को नेस्त नाबूद कर दिया और सारी दुनिया को यह बता दिया कि भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए वह किसी हद तक जा सकता है। हमने दुनिया को बताया कि हमारी नारी शक्ति के सिंदूर की रक्षा करने के लिए हम किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं।
1: रक्षामंत्री नवदिल्ल्याः मुख्य सैन्य चिकित्सालये आयोजितस्य सिंदूर महारक्तदान यात्रा रक्तदान शिविरस्य उद्घाटन समारोहे एतत् अवोचत्। रक्षामंत्रिणा पाकिस्ताने स्थितानां आतंकवादीनां विनाशाय भारतीय सुरक्षा बलस्य मुक्त कंठं प्रशंसा कृता। सः अकथयत् यत् महाराष्ट्रस्य प्रायः 1,000 मल्लाः क्रीडकाश्च अस्मिन् शिबिरे रक्तदानम् अकुर्वन्। सः एतदपि प्रतिपादितवान् यत् एषा घटना सुरक्षाबलैः सह निस्वार्थ सेवाभावस्य सुदृढ़ एकतायाः च परिचायिका अस्ति। सः जनेभ्यः विशेषतः युवभ्यः रक्तदानं स्वजीवनशैलीं विधातुम् आह्वानम् अकरोत्। केन्द्रीय उपभोक्तृ कार्य खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभागस्य सचिवेन तथा वरिष्ठाधिकारिभिः सह समीक्षा सभाम् आयोजितवान्। अस्यां सभायां वर्तमानस्य शर्करा भाण्डारस्य स्थितिम्, उत्पादनस्य स्तरं तथा च वर्तमानस्य शर्करा कालस्य आवश्यकतां ज्ञातुं समीक्षा समाचारितं गता। जम्मू कश्मीर प्रदेशे प्रतिवर्षम् आयोज्यमाना अमरनाथ यात्रा अद्यतन पहलगाम बालतल मार्गयोः स्थगिता भविष्यति। निर्णयोऽयं सतत वृष्टि कारणात् तीर्थयात्रा मार्गे जीर्णोद्धार कारणात् अपि च आगामिषु कतिपय दिवसेषु प्रतिकूल जलवायोः पूर्वानुमान कारणात् स्वीकृतोऽस्ति। भारतीय बैडमिंटन क्रीडिका अश्मिता

0: ആകാശവാണി ഇപ്പോൾ സമാചാർ സന്ധ്യ, തുടർന്ന് ന്യൂസ് അറ്റ് 9 ഡൽഹിയിലെ.
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है. टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें. कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है. यहां आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है. आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है.
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सरफिरोजी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल के पदक विजेताओं से बातचीत की, लोगों से भारतीय खिलाड़ियों का हमेशा उत्साहवर्धन करने का आग्रह किया. देश भर में कई कार्यक्रमों के साथ हर घर तिरंगा

0: बर्दाश्त न करने की नीति के तहत देशवासियों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी ने लाभार्थियों को 1 करोड़ से अधिक घर सौंपकर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की और तूफान डॉल्फिन चीन के पूर्वी तट पर पहुंचा, 1300 से अधिक उड़ानें रद्द और 3 लाख लोग विस्थापित। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली स्थित अपने आवास पर इस वर्ष के राष्ट्रमंडल खेलों के पदक विजेताओं से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने कहा कि जो लोग खेलों से जुड़ते हैं वे जीवन में आगे बढ़ते हैं। उन्होंने देशवासियों से खिलाड़ियों का हमेशा उत्साह बढ़ाने की अपील की।
1: जो खेलेगा वो खिलेगा। ऑलवेज चीयर फॉर भारत। भारत माता की
2: जय।
1: भारत माता की
2: जय।
1: भारत माता की
2: जय।
0: स्कॉटलैंड के ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 39 पदक जीतकर पदक तालिका में चौथे स्थान पर था। हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू हो गया है। 17 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य देशवासियों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना है।
3: आसमान को पाना है, आसमान से आगे जाना है।
0: इस वर्ष ये अभियान राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ मनाया जा रहा है। देश भर में वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी होगा। दुनिया भर में 200 से अधिक भारतीय दूतावास, उच्चायोग और वाणिज्य दूतावास भी अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से इस अभियान में उत्साह के साथ शामिल होने और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने का संकल्प फिर से लेने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि तिरंगा देश का गौरव है। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि इस वर्ष का अभियान वंदे मातरम को समर्पित है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी श्री विजयपुरम में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। उन्होंने वीर स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति वंदे मातरम पर तिरंगा संगीत कार्यक्रम में भी शामिल हुए। उन्होंने देश के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े भारत छोड़ो आंदोलन का स्मरण किया।
4: To launch this campaign today on the August Kranti Divas as we commemorate the Quit India Movement of 1942. Millions of Indians responded to this call and rose against the British with the unwavering resolve of do or die on this day. It is therefore deeply significant that we launch the Har Ghar Tiranga campaign from the historic islands on this historic day.
0: गृह मंत्री अमित शाह ने पुदुचेरी में तिरंगा यात्रा को रवाना किया। हजारों लोगों ने इस यात्रा में तिरंगे के साथ भागीदारी की। मध्य प्रदेश और जम्मू कश्मीर सहित देश भर में आज से हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत सप्ताह भर के कार्यक्रम शुरू हुए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। झारखंड सरकार और प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों की अधिकतर मांगों पर सहमति बन गई है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
5: झारखंड सरकार ने आंदोलनरत छात्रों की अधिकांश मांगों पर सहमति जताई है। राज्य के मंत्री सुदेव कुमार सोनू ने कहा कि सरकार 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा और वर्ष 2023 से 25 की बैकलॉग परीक्षाओं को रद्द करने पर सहमत है। आज सरकार और छात्रों के बीच हुई वार्ता के बाद में मंत्री ने कहा कि कथित वित्तीय अनियमितताओं की ईडी जांच और आपराधिक मामलों की सीआईडी जांच कराई जाएगी। साथ ही 90 दिनों के भीतर आरोप पत्र दाखिल करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने की भी बात कही गई है। परीक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार के लिए आईआईटी आईएसएम आईआईएम रांची और एक्सएलआरआई के विशेषज्ञों की एक समिति गठित की जाएगी। छात्रों ने कहा कि सीबीआई जांच की मांग पर कोई समझौता नहीं होगा। इस बीच झारखंड लोक सेवा आयोग के 3 मौजूदा सदस्यों ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है। तीनों को सीआईडी ने कल पूछताछ के लिए तलब किया है। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को ये स्पष्ट

0: संदेश दिया कि भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। नई दिल्ली में रक्षा मंत्री ने एक कार्यक्रम में ये बात कही।
1: पहलगाम में धर्म पूछकर हमारे निर्दोष नागरिकों पर कायराना आतंकी हमला हुआ था, तो उसके बाद हमारी बहादुर सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत की थी। हमने पाकिस्तान में बैठे आतंकियों और उनके सरपरस्तों को नेस्त नाबूद कर दिया और सारी दुनिया को यह बता दिया कि भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए वह किसी हद तक जा सकता है। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से हमने दुनिया को बताया कि हमारी नारी शक्ति के सिंदूर की रक्षा करने के लिए हम किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं।
0: गृह मंत्री अमित शाह पुदुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्रदान किए जाने के समारोह में शामिल हुए। श्री शाह ने कहा कि राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्राप्त करना किसी भी अनुशासित पुलिस बल के जीवन के सबसे गौरवशाली क्षणों में से है। गृह मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार द्वारा औपनिवेशिक काल के कानूनों की जगह लाए गए 3 नए आपराधिक कानूनों का उद्देश्य प्रौद्योगिकी आधारित और समयबद्ध प्रणाली के माध्यम से नागरिकों को समयबद्ध न्याय सुनिश्चित करना है।
2: ये न्याय संहिताओं की सोच दंड आधारित नहीं है। ये न्याय संहिताओं की सोच नागरिकों को न्याय दिलाने के लिए केंद्रित, तकनीक सक्षम और समयबद्ध बनाने की है। ये तीनों न्याय संहिताएं टेक्नोलॉजी, टाइमलाइन और ट्रस्ट, ये 3 पिलर पर खड़ी की गई है।
0: उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रह्लाद जोशी ने आज एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में वर्तमान चीनी मौसम के लिए चीनी के भंडार की स्थिति, उत्पादन और जरूरतों का आकलन किया गया। श्री जोशी ने चीनी का पर्याप्त भंडार बनाए रखने के लिए इसकी उपलब्धता की सघन निगरानी और समय समय पर आवश्यक उपाय करने पर बल दिया ताकि पूरे मौसम के दौरान चीनी की स्थायी आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए से संबंधित मामलों को लेकर शिक्षा मंत्रालय के सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। श्री जोशी ने संस्थागत व्यवस्था को मजबूत करने, प्रक्रिया सुचारू बनाने और विद्यार्थियों के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करने से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श किया। श्री जोशी ने कहा कि सरकार का मुख्य ध्यान मजबूत, पारदर्शी और विश्वसनीय परीक्षा व्यवस्था बनाने पर है ताकि प्रत्येक विद्यार्थी की आकांक्षा पूरी हो सके। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने कहा है कि पीएम आवास योजना शहरी और दूसरे चरण की पीएम आवास योजना शहरी के अंतर्गत अब तक 1,25,00,000 से अधिक मकानों को मंजूरी दी जा चुकी है। इनमें से 1 करोड़ से ज्यादा मकान बनकर तैयार हो चुके हैं और लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं। इनमें करीब 1 करोड़ मकान महिलाओं को आवंटित किए गए हैं। एक रिपोर्ट।
3: दूसरे चरण की पीएम आवास योजना शहरी में स्वीकृत 2,09,000 आवासों में से 2,03,000 से अधिक आवास महिलाओं को आवंटित किए गए हैं। वहीं वरिष्ठ नागरिकों के लिए 16,600 से अधिक आवास स्वीकृत किए गए हैं, जबकि करीब 22,000 आवास अनुसूचित जाति, 14,000 से अधिक अनुसूचित जनजाति और 75,000 से अधिक आवास अन्य पिछड़ा वर्ग के लाभार्थियों को आवंटित किए गए हैं। इस योजना में आवासों के स्वामित्व में महिलाओं को प्राथमिकता दी गई है। पीएम आवास योजना शहरी की शुरुआत वर्ष 2015 में पात्र शहरी लाभार्थियों को बुनियादी नागरिक सुविधाओं से युक्त हर मौसम के लिए उपयुक्त पक्के मकान उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गई थी। आनंद कुमार के साथ सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता में 300 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। 31 जुलाई को हासिल की गई ये उपलब्धि वर्ष 2030 के लिए निर्धारित 500 गीगावाट क्षमता के लक्ष्य का 60% से अधिक है। सौर ऊर्जा प्रमुख विकास इंजन बनी हुई है। इसकी वर्तमान स्थापित क्षमता लगभग 165 गीगावाट है, जो वर्ष 2014 में मात्र 2.8 गीगावाट थी। नागर विमानन मंत्रालय ने कहा है कि विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो फुकेट से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की उड़ान में हुई घटना की जांच कर रहा है। इसे गंभीर घटना के रूप में दर्ज किया गया है। दोनों पायलट की मादक पदार्थों के सेवन की जांच की गई। जांच पूरी होने तक दोनों पायलट को ड्यूटी से हटा दिया गया है। मंत्रालय ने कहा कि जांच और अंतिम रिपोर्ट के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। जनजातीय लोगों के अधिकारों, संस्कृति, परंपरा और योगदान को

0: मान्यता देने के लिए आज दुनिया भर में विश्व जनजातीय दिवस मनाया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 1994 में जनजातीय लोगों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए इस दिवस की शुरुआत की थी। इस वर्ष का विषय है जनजातीय धाय सम्मान, जीवन और देखभाल का संरक्षण। इस अवसर पर देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। हरियाणा में संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित पवित्र कलश वंदन यात्रा आज कंबोपुरा गांव पहुंची। बड़ी संख्या में लोगों ने संत श्री रविदास मंदिर में यात्रा का स्वागत किया। ये यात्रा गुरु रविदास की जन्मभूमि उत्तर प्रदेश के काशी स्थित सीर गोवर्धनपुर से शुरू हुई थी। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कल मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिनों के दौरान दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, आसाम, मेघालय, पूर्वी मध्य प्रदेश, जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख में भी तेज बारिश हो सकती है। ओडिशा में एक बार फिर तेज बारिश होने के बाद बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। एक रिपोर्ट।
1: उड़ीसा में लगातार भारी बारिश हो रही है, जिससे कई जिलों में एक बार फिर बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। इस सीजन में बैतरणी नदी में तीसरी बार बाढ़ आई है, जिससे जाजपुर और भद्रक जिलों के कुछ हिस्सों में फिर से पानी भर गया है। जबकि बैतरणी की एक शाखा कानी नदी के कारण जाजपुर जिले में फिर से बाढ़ आ गई है। IMD ने पूरे राज्य के लिए येलो वार्निंग जारी की है और अनुमान लगाया है कि उत्तरी उड़ीसा, पश्चिम उड़ीसा के कुछ हिस्सों और पश्चिम बंगाल के आसपास के इलाके में कम दबाव वाले सिस्टम के कारण भारी बारिश होगी। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: चीन के पूर्वी तट से तूफान डॉल्फिन के टकराने से झेजियांग और फुजियान प्रांत प्रभावित हुए हैं। मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच शंघाई के दोनों हवाई अड्डों ने 1300 से अधिक उड़ानें रद्द कर दी हैं और 3,00,000 लोग विस्थापित हुए हैं। तूफान के तट से टकराने के बाद उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने और धीरे धीरे कमजोर पड़ने की संभावना है। उज्बेकिस्तान में एशियाई जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महाराजन अरुमुंग पंडियन ने 65 किलो वर्ग में रजत पदक जीत लिया है। महाराजन ने आज कुल 285 किलो का भार उठाकर अपना व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल के पदक विजेताओं से बातचीत की, लोगों से भारतीय खिलाड़ियों का हमेशा उत्साहवर्धन करने का आग्रह किया। देश भर में कई कार्यक्रमों के साथ हर घर तिरंगा अभियान शुरू, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने लोगों से अभियान में शामिल होकर विकसित भारत के लिए फिर से संकल्प लेने की अपील की। झारखंड सरकार अनियमितताओं के आरोपों के बाद JPSC प्रारंभिक परीक्षा रद्द करने पर सहमत। प्रदर्शनकारी छात्रों ने कहा आंदोलन जारी रहेगा। JPSC के 3 सदस्यों ने इस्तीफा दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को स्पष्ट संदेश दिया कि भारत आतंकवाद कतई बर्दाश्त न करने की नीति के तहत देशवासियों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाएगा। और तूफान डॉल्फिन चीन के पूर्वी तट पर पहुंचा, 1300 से अधिक उड़ानें रद्द और 3,00,000 लोग विस्थापित। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम निशित कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi interacts with medal winners of Commonwealth Games 2026, urges citizens to always cheer for Bharat. Har Ghar Tiranga campaign begins with multiple events across the country. Vice President and Prime Minister appeal to people to renew commitment to Viksit Bharat by joining this movement. Jharkhand government agrees to scrap JPSC preliminary exam over allegations of irregularities. Protesting students say agitation will continue. 3 JPSC members resign from their posts. Defence Minister Rajnath Singh asserts Operation Sindoor sent global message that India will go to any extent to protect its citizens with zero tolerance approach to terrorism. Pradhan Mantri Awas Yojana Urban has crossed major milestone with over 1 crore houses handed over to beneficiaries so far. And Typhoon Dolphin hits China's eastern coast, over 1,300 flights cancelled while 3,00,000 people relocated.

0: ആകാശവാണി ഇപ്പോൾ രവിവാസരീയ അഖിൽ ഭാരതീയ സംഗീത സഭ സാത്വിക മോഹൻ അവതരിപ്പിക്കുന്ന സംഗീത കച്ചേരി കേൾക്കാം ഡൽഹി റിലെ.
1: യേ ആകാശവാണി ഹെ രവിവാസരി അഖിൽ ഭാരതീയ സംഗീത സഭ മേ ആജ് രാത് കേ കാര്യക്രം മേ ഹം ആപ്കേ ലിയേ ശ്രീമതി സാത്വിക മോഹൻ കാ ഗായൻ പ്രസ്തുത് കർത്തേ ഹെ.
2: ദിസ് ഈസ് ആകാശവാണി ഇന്റർനെറ്റ്സ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ഓഫ് രവിവാസരി അഖിൽ ഭാരതീയ സംഗീത സഭ. വി ബ്രിംഗ് യു എ വോക്കൽ റിസൈറ്റൽ by Srimati Satvika Mohan.
1: Srimati Satvika Mohan Akashvani aur Doordarshan ki A grade kalakar hain aur ek sushikshit Carnatic classical gayika aur violin vadak hain. Inhone apni prathamik sangeet shiksha Srimati V Lalita se shuru ki aur Vishnu Vatla Sisters naam se prasiddh behno mein Vidushi Srimati Vishnu Vatla Krishnaveni ke saath aage ka abhyas jari rakha. बाद में इन्होंने सुप्रसिद्ध हैदराबाद ब्रदर्स में से विद्वान डी राघवाचारी के मार्गदर्शन में अपने कौशल को निखारा. 6 साल की छोटी उम्र में प्रथम प्रदर्शन देने वाली इस बाल कलाकार ने आंध्र प्रदेश के सरकार से प्रतिष्ठात्मक बाल रत्न पुरस्कार प्राप्त किया है. इन्होंने कर्नाटक गायन में भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के CCRT के द्वारा वरिष्ठ छात्रवृत्ति प्राप्त किया. उसी वर्ष में आकाशवाणी के राष्ट्रीय संगीत प्रतियोगिता में शास्त्रीय भक्ति संगीत में प्रथम पुरस्कार और कर्नाटक शास्त्रीय गायन में द्वितीय पुरस्कार भी प्राप्त किया है. ये आकाशवाणी में पुरस्कार प्राप्त करने वाली दूसरी पीढ़ी की गायिका हैं. इन्होंने प्रख्यात सभाओं में, प्रतिष्ठात्मक संगीत उत्सवों में और भारत के अग्रगामी सांस्कृतिक संस्थानों में प्रदर्शन दिया है. इन्होंने कर्नाटक गायन में और वायलिन में डिप्लोमा के साथ साथ संगीत में MA डिग्री हासिल की है और IIT खड़गपुर में MBA डिग्री भी प्राप्त की है.
2: श्रीमती सात्विका मोहन इज एन ए ग्रेड

0: अब आप सुनेंगे त्यागराज स्वामी की एक कृति जो राग आनंद भैरवी तथा आदि ताल में निबद्ध है।
1: यू विल नाउ लिसन टू ए कंपोजिशन ऑफ त्यागराज स्वामी इन द राग आनंद भैरवी सेट टू आदि ताल।

0: श्रीमती सात्विका मोहन अपना गायन जारी रखते हुए अब प्रस्तुत करेंगी नारायण तीर्थ द्वारा रचित एक तरंगम, जो राग बिलहरी तथा आदि ताल में निबद्ध है।
1: कंटिन्यूइंग हर वोकल रिसाइटल, श्रीमती सात्विका मोहन विल नाउ प्रेजेंट ए नारायण तीर्थ तरंगम इन द राग बिलहरी सेट टू आदिताल।

0: अब आप सुनेंगे मैसूर वासुदेवाचार्य की एक रचना जो राग सिम्हेंद्र मध्यमम तथा मिश्र चापू ताल में निबद्ध है।
1: यू विल नाउ लिसन टू ए कंपोजिशन ऑफ मैसूर वासुदेवाचार इन द राग सिम्हेंद्र मध्यमम सेट टू मिश्र चापू ताल।

0: वो था तन्यावर्तनम, जिसे मृदंगम पर विद्वान पीरवली जय भास्कर और घटम पर श्री एम चंद्रकांत ने प्रस्तुत किया।
1: दैट वाज द तन्यावर्तनम प्लेड ऑन मृदंगम बाय विद्वान पीरवली जय भास्कर एंड ऑन घटम बाय श्री एम चंद्रकांत।
0: श्रीमती सात्विका मोहन अपने गायन का समापन श्री कनक दास की एक कृति के साथ कर रही हैं, जो राग सिंध भैरवी तथा खंड चापू ताल में निबद्ध है।
1: श्रीमती सात्विका मोहन कंक्लूड्स हर वोकल रिसेटल विद द कंपोजिशन ऑफ श्री कनकदासा इन द राग सिंधु भैरवी सेट टू खंड चापू ताल।

0: इसी के साथ हम रविवार से अखिल भारतीय संगीत सभा में श्रीमती सात्विका मोहन का गायन समाप्त करते हैं। आज की सभा में उनके साथ वायलिन पर थे श्री ओ राजशेखर, मृदंगम पर विद्वान पेरवली जय भास्कर और घटम पर श्री एम चंद्रकांत। रविवार से अखिल भारतीय संगीत सभा के लिए आकाशवाणी हैदराबाद के प्रसारण कक्ष में इस संगीत कार्यक्रम का ध्वन्यांकन किया गया है। ये कार्यक्रम आपके लिए आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रस्तुत किया गया है।
1: With that, we conclude the vocal recital by Srimati Satvika Mohan in the broadcast of Ravi Vasriya Akhil Bharatiya Sangeet Sabha. She was accompanied on violin by Sri O. Rajshekar, on Mridangam by Vidwan Peravali Jayabhaskar and on Ghatam by Sri M. Chandrakant. This concert was recorded at the studios of Akashvani Hyderabad for Ravi Vasriya Akhil Bharatiya Sangeet Sabha and brought to you from the Delhi station of Akashvani.

0: 2331-0481 and 2371-7106. And of course, do prefix the code 011. Along with my co-anchor Sonu Sood, I am Sarabjeet Kaur.
1: धन्यवाद सरबजीत. नमस्कार श्रोताओं, कारोबारी खबरों के कार्यक्रम मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है. आज रविवार है और हर रविवार की तरह आज भी हम म्यूचुअल फंड से जुड़े आपके प्रश्न इस प्रोग्राम में शामिल करेंगे. सवाल पूछने के लिए आप इन नंबरों पर हमें फोन कर सकते हैं, 2331-4444, 2371-0481 और 2371-7106. श्रोताओं, इससे पहले एसटीडी कोड 011 भी डायल करें. आज की खबरों पर चर्चा करने और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है म्यूचुअल फंड्स एक्सपर्ट आशुतोष गुप्ता. आशुतोष, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है.
2: जी, धन्यवाद.
1: और अब सबसे पहले हेडलाइंस के साथ सरबजीत कौर.
0: Foreign portfolio investors infuse over 12,900 crore rupees into Indian equities during first week of August. Global crude oil prices tumble last week, and domestic investors to focus on inflation data, corporate earnings results and geopolitical developments for Q's next week.
1: विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने अगस्त के पहले सप्ताह के दौरान भारतीय शेयर बाजार में 12,900 करोड़ रुपए से अधिक का किया निवेश. कच्चे तेल की वैश्विक कीमतों में पिछले सप्ताह आई गिरावट और घरेलू निवेशकों का ध्यान अगले सप्ताह संकेतों के लिए मुद्रास्फीति के आंकड़ों, कंपनी आमदनी से जुड़े नतीजों और भू राजनीतिक गतिविधियों पर केंद्रित रहेगा.
0: And before we go any further in the program, may we once again remind our listeners, views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We also advise our listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: और अब खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं सरबजीत.
0: जी,
1: विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों एफपीआई अगस्त के पहले हफ्ते में भारतीय शेयर बाजार में शुद्ध खरीदार बने रहे. ताजा डिपॉजिटरी आंकड़ों के अनुसार एफपीआई ने इस महीने अभी तक घरेलू शेयर बाजार में 12,921 करोड़ रुपए का निवेश किया है. जुलाई में खरीदारी में आई गति अगस्त में भी जारी रही है. ये तेजी घरेलू आर्थिक आंकड़े और कंपनियों की तिमाही आमदनी मजबूत रहने के बल पर आई है. इस बीच ऋण बाजार में निवेश का रुख मिला जुला रहा है. अभी तक अगस्त में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने जनरल लिमिट की श्रेणी में ऋण प्रतिभूतियों में 622 करोड़ रुपए निवेश किए हैं. हालांकि फुली एक्सेसिबल और वॉलंटरी रिटेंशन श्रेणियों से आलोच्य अवधि के दौरान 350 करोड़ रुपए से अधिक की निकासी हुई है. और अब आज के हमारे पहले श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं, चेन्नई से काशीनाथ. आपका स्वागत है मार्केट मंत्र में, सवाल पूछें.
3: गुड इवनिंग मार्केट मंत्र
1: जी. गुड इवनिंग.
3: मेरा सवाल है, मेरा पास दो फ्लेक्सी कैप फंड है, जैसे कि क्वांट फ्लेक्सी कैप और जेम फ्लेक्सी कैप, इसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए. फंड अच्छा है कि बुरा है? धन्यवाद.
2: जी देखिए, कोई भी फ्लेक्सी कैप फंड काफ़ी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करते हैं. फंड मैनेजर के पास पूरी फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि वो किस टाइप के मार्केट सेगमेंट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप. और किसी भी फंड को अच्छे या बुरे आकलन के लिए आप बहुत छोटे अवधि के रिटर्न्स के ऊपर उस पर अपनी कोई भी धारणा ना बनाएं. थोड़ा लॉन्ग टर्म ट्रेंड को देखें, और अगर फंड थोड़ा हाल फिलहाल में अंडर परफॉर्म करता भी है तो उससे बहुत ज़्यादा हताश ना हो, उसको थोड़ा टाइम दें. तो आप इन दोनों फंड्स का आकलन करें, थोड़ा 3-5 साल के रिटर्न्स देखें कि अपने बेंचमार्क के अगेंस्ट कैटेगरी में बाकी पीयर्स के अगेंस्ट कैसे कर रहा है, और उसके अकॉर्डिंग आप इसमें अपना निर्णय लें. बहुत जल्दी ना करें बेचने की, क्योंकि अब इक्विटी में भी टैक्स लगता है. तो अगर आप कोई भी जल्दबाजी में निर्णय लेते हैं फंड स्विच करने का, तो आपके लिए एक टैक्स का बड़ा कॉस्ट उसमें इन्वॉल्व होता है. तो डोंट बी इन अ हरी.
1: सो आशुतोष जी, सेबी की जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है उसमें कुछ

0: तथ्य आए हैं जिन पर हम आपकी टिप्पणी चाहेंगे। उसमें कहा गया है कि SIP को ज्यादा से ज्यादा जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो एडॉप्ट कर रहे हैं, और जो अकाउंट्स हैं वो भी बड़े हैं, और जो वैल्यू है अगर हम पिछले वित्त वर्ष में देखें तो 40 लाख अकाउंट ऐड हुए टोटल नंबर में, और एवरेज नेट मंथली SIP इन्वेस्टमेंट भी 25.8% बढ़ी। तो इसको आप कैसे देखते हैं, ये क्या भारतीय म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में भरोसा बढ़ रहा है निवेशकों का?
1: जी बिल्कुल, मेरी राय में म्यूचुअल फंड एक रिटेल इन्वेस्टर के इक्विटी मार्केट्स में पार्टिसिपेट करने का, ब्रॉडली इक्विटी और डेट मार्केट्स में पार्टिसिपेट करने का एक बेहतरीन साधन है। वेल रेगुलेटेड, वेरी ट्रांसपेरेंट और रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ये फंड्स आते हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स की अच्छे से यहाँ पे प्रोटेक्शन की व्यवस्था है, तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा सेटअप है। म्यूचुअल फंड्स एक काफ़ी रिलायबल और रोबस्ट वेल रेगुलेटेड प्रोडक्ट है, और इनमें इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ना हाल फिलहाल के सालों में ये एक अच्छा संकेत है। और SIP और भी अच्छा ट्रेंड है, क्योंकि इक्विटी मार्केट्स में जिस तरह के उतार चढ़ाव देखे जाते हैं, तो अगर इन्वेस्टर्स एक साथ अपना पैसा ना लगाकर रेगुलर डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्ट करते हैं तो वो मार्केट के उतार चढ़ाव से बहुत जल्दी निराश या परेशान नहीं होते। तो SIP एक बेहतरीन साधन है मार्केट्स में इन्वेस्ट करने का। दूसरा ये भी होता है कि जब भी मार्केट गिरती है, SIP निवेशक आमतौर पर देखा गया कि बहुत जल्दी मार्केट से भाग नहीं खड़े होते
0: जी
1: मार्केट फॉल में, और ये लंबे समय में इक्विटी मार्केट से रिटर्न बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप डाउन मार्केट में सब कुछ बेचकर भाग ना जाएं। तो SIP उसमें भी काफ़ी हेल्प करता है रिटेल इन्वेस्टर्स की बने रहने में मार्केट के उतार चढ़ाव के माहौल में। तो बहुत अच्छे ट्रेंड्स हैं, और मुझे लगता है कि आने वाले सालों में जिस तरह से ट्रेंड चल रहा है अगर ये बरकरार रहता है तो भारतीय निवेशकों, रिटेल आम निवेशक के लिए ये काफ़ी लाभदायक हो जाने में सक्षम है।
2: Ashutosh, we'll come back to you on that. Meanwhile, we connect with our next caller from Mumbai. Amit ji, please ask your question.
3: Namaste, madam. मैं अमित बात कर रहा हूँ महाराष्ट्र बारामती से।
2: जी।
3: मेरा सवाल है, जो बैंक ऑफ बड़ौदा का NFO न्यू फंड ऑफर एक म्यूचुअल फंड है, उसमें मैंने अभी इन्वेस्टमेंट किया है, तो वो अच्छा है या नहीं जरा बताइए। और दूसरा सवाल, अब मैं इंडिया फर्स्ट के बारे में पूछ सकता हूँ क्या मैडम?
2: सॉरी,
3: हेलो, इंडिया फर्स्ट में भी मैंने इन्वेस्टमेंट किया है 5 साल के लिए, हर साल मैंने 1-1 लाख रुपए इन्वेस्ट करता हूँ, और 5 साल तक वो पैसे भरना या 7 साल के बाद मुझे मिलेगा, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट अच्छा है या नहीं ये भी बताइए। थैंक यू।
0: आशुतोष जी, श्रेणी के हिसाब से आप बता सकते हैं।
1: जी, तो देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा के आपने NFO की बात करी, देखिए मैं आपको सलाह दूंगा कि आम तौर पर आप NFO में निवेश करने से बचें। अभी आपने लगा दिया है तो देखिए नए फंड के बारे में कुछ भी जानकारी देना कहना मुश्किल होता है, जब तक कि उसका कुछ ट्रैक रिकॉर्ड नहीं बिल्ड होता कि फंड मैनेजर किस तरह से मैनेज कर रहे हैं, किस टाइप के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, क्या उनका पोर्टफोलियो बनाने का स्ट्रैटेजी रहता है। तो नए फंड के बारे में कुछ भी टिप्पणी करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन आम तौर पर मैं आपको ये सलाह दूंगा कि बहुत सारे अच्छे रनिंग, वेल रनिंग फंड्स, लॉन्ग स्टैंडिंग ट्रैक रिकॉर्ड वाले फंड्स उपलब्ध हैं आपके पास। प्रेफर करिए कि नया फंड अगर कुछ ऐसा खास नहीं दे रहा है जो कि एग्जिस्टिंग फंड से आपको जो इन्वेस्टमेंट नीड पूरी नहीं हो रही है, तो ही आप NFO की तरफ जाएं, अदरवाइज आप लॉन्ग स्टैंडिंग फंड्स में ही अपना निवेश करें। बहरहाल इस फंड में क्योंकि आप निवेश अभी कर चुके हैं तो अब आप इसको देखिए, थोड़ा धैर्य से फंड मैनेजर को पोर्टफोलियो बनाने दीजिए, किस टाइप का वो परफॉर्म करता है, कम से कम 1.5 साल बाद आप सोचिएगा इस बारे में कि ये फंड का क्या करना है।
0: दिल्ली से हमारे अगले श्रोता KK मदन जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत, सवाल पूछें।
4: नमस्कार, मार्केट मंत्रा मैं
0: आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है, थोड़ा सा आप यदि अपना स्थान चेंज करें। थोड़ी आपकी आवाज स्पष्ट नहीं है, अगर आप दोबारा हमें फिर फोन कर सकें फिर से।
4: आपकी आवाज मुझे बिल्कुल।
0: हाँ जी, हाँ जी, बताइए बताइए बताइए।
4: एक क्वेश्चन ये है कि मैंने 2-3 फंड में शिफ्ट किया हुआ 5-5 हजार के, मैं सीनियर सिटीजन हूँ, तो उसमें HDFC मिड कैप ऑपर्चुनिटी फंड, मिड फंड, मल्टी कैप फंड, इन सब

0: सेटिस्फाई हूँ, लेकिन एक्सिस लार्ज कैप फंड उसमें मेरा CAGR सिर्फ 7% 8% आ रहा है, तो पिछले 4 साल से मेरा सिर्फ चल रहा है, मैं इसको कंटिन्यू करूँगा या डिसकंटिन्यू कर दूंगा, मेरा ये प्रश्न
1: जी। देखिए, पहली बात तो आपका ओवरऑल आपने आपकी स्ट्रैटेजी सही है कि आपने डाइवर्सिफाइड फंड्स को चुना है, आपके पास एक मल्टी कैप फंड है, एक लार्ज कैप फंड है, एक मिड कैप फंड है, तो ओवरऑल आपने बहुत ज़्यादा सेक्टर थीमेटिक फंड्स की तरफ आप नहीं गए हैं, ये तो इसमें मैं आपकी सराहना करूँगा कि आपकी चॉइस ऑफ कैटेगरी ऑफ फंड्स अच्छा है। एक्सिस लार्ज कैप पिछले कुछ साल थोड़े निराशाजनक रहे हैं इस फंड के लिए ज़रूर, क्योंकि परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं दे पाए हैं, तो अगर आप काफी निराश हैं इस फंड से तो आप अकॉर्डिंगली अपना डिसीजन ले सकते हैं।
2: वी मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट कॉलर फ्रॉम दिल्ली। दिनेश जी सवाल पूछें।
3: नमस्कार, मैं दिनेश कुमार बोल रहा हूँ दिल्ली अशोक विहार से
2: जी।
3: मेरे दो क्वेश्चन हैं, एक तो ये है कि जब गोल्ड फंड और सिल्वर फंड बढ़ते हैं या कम होते हैं तो डिफरेंट म्यूचुअल फंड हाउसेज जो है वो गोल्ड या सिल्वर फंड या ETF के जो परसेंटेज इंक्रीज है वो अलग अलग क्यों दिखाते हैं जबकि इट शुड बी सेम। दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे गोल्ड फंड है वो उसको FOF कहते हैं, फंड ऑफ फंड्स, तो इसका मतलब क्या ये हुआ कि उस हम इन्वेस्टर जो है उसके भी एक्सपेंस बियर करता है और वो फंड जिस फंड में इन्वेस्ट कर रहा है उसका भी एक्सपेंस होता होगा, वो भी बियर करता है, क्योंकि हमें जो पता चलता है केवल फर्स्ट फंड का ही एक्सपेंस रेशो पता चलता है, दूसरे फंड का एक्सपेंस रेशो नहीं पता चलता है। थैंक यू
1: जी। तो पहला सवाल आपका कि गोल्ड और सिल्वर फंड्स में जब सारे ही ये फंड्स गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट करते हैं तो इनके प्राइस में या इनके रिटर्न्स में डिफरेंस क्या होता है। काफ़ी अच्छा सवाल है, आपने काफ़ी आपने ऑब्जर्व किया उस बेसिस पे आप ये पूछ रहे हैं। तो देखिए, गोल्ड ETF, सिल्वर ETF, इनका जो आपको रिटर्न मिलता है वो डिपेंड करता है मार्केट के क्लोजिंग प्राइस के ऊपर। तो जो ETFs होते हैं वो ट्रेड करते हैं स्टॉक मार्केट में, और स्टॉक मार्केट में ये ज़रूरी नहीं है कि जो अंडरलाइंग NAV है फंड का क्लोजिंग प्राइस या फंड्स का ट्रेडेड प्राइस NAV के आसपास हो। काफ़ी बार देखा गया है कि फंड्स प्रीमियम पे या कभी कभी डिस्काउंट पर भी ट्रेड करते हैं, तो जो इन्वेस्टर के रिटर्न्स होते हैं वो इन पर उनके ट्रेडेड प्राइस पर निर्भर करते हैं, ना कि अंडरलाइंग NAV पर, तो इस वजह से इनके रिटर्न्स डिफर कर जाते हैं। दूसरी बात, जो गोल्ड फंड ऑफ फंड्स होते हैं वो बेसिकली आप देखिएगा कि हर फंड कंपनी के पास एक ETF वेरिएंट होता है और एक FOF वेरिएंट होता है। FOF वेरिएंट सिंपली ये करता है कि आपका पैसा जो कलेक्ट करता है वो उठाकर ETF में लगा देता है, गोल्ड उन्हीं का जो गोल्ड ETF होता है। तो यहां पर भी जो आपको NAV डिक्लेयर होती है फंड ऑफ फंड्स की, वो ETF के ट्रेडेड स्टॉक मार्केट प्राइस पर निर्धारित होती है, इसलिए इनके रिटर्न्स डाइवर्ज करते हैं अलग अलग फंड में। कुछ फंड्स में जिनमें ट्रेडिंग वॉल्यूम काफ़ी अच्छे होते हैं, प्रीमियम या डिस्काउंट कम रहता है, NAV के क्लोज ट्रेड करते हैं, वो काफ़ी इन्वेस्टर सेंट्रिक है, मतलब वो इन्वेस्टर्स के लिए अच्छी बात है, और उनके रिटर्न्स NAV के रिटर्न्स के आसपास रहते हैं। लेकिन जो फंड्स में ट्रेडिंग वॉल्यूम कम होती है इसलिए प्राइस काफ़ी वेरी कर जाता है, प्रीमियम या डिस्काउंट पे रहता है, उनके रिटर्न्स में आपको काफ़ी बार कुछ उठापटक दिखेगी, NAV के क्लोज नहीं होगा। और आपका ये आंकलन बिल्कुल सही है कि क्योंकि ये FOFs ETFs में इन्वेस्ट करते हैं तो जो FOF के एक्सपेंस की लेयर होती है वो ETF के एक्सपेंस के ऊपर होती है, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंस नहीं होता है, एक मामूली सा एक्स्ट्रा लेयर होता है, क्योंकि FOF अपने आप में कुछ नहीं कर रहा है, वो सिर्फ पैसे इकट्ठा कर आप जो पैसे उसमें निवेश करते हैं वो पैसा इकट्ठा करके ETF में लगा देता है, वहाँ पे और कोई काम नहीं हो रहा है, कोई और फंड मैनेजर का ऐसा कोई रोल नहीं होता है खास, तो वो एक्सपेंस की लेयर काफ़ी थिन होती है लेकिन ज़रूर होती है। तो अगर आप एक्सपेंस देखना चाहते हैं तो आप किसी भी फंड कंपनी के ETF का और FOF का, आप दोनों का अगर एक्सपेंस देखेंगे और उनको ऐड कर देंगे तो आपको थोड़ा अंदाज लगेगा कि आप टोटल एक्सपेंस कितना दे रहे हैं, आपको कौन सा चुनाव करना चाहिए। देखिए, अगर आपके पास स्टॉक मार्केट में आप वैसे भी स्टॉक्स में निवेश करते हैं, आपके पास DMAT ट्रेडिंग अकाउंट है, तो आप ETF की तरफ जा सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक गोल्ड फंड में निवेश करने के लिए अगर आप आपके लिए कन्वीनियंट ज़्यादा होगा कि आप स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट फॉर्मेट में FOF ही खरीदें, लेकिन अगर आप आमतौर पर वैसे भी स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं तो आप ज़रूर ETF की तरफ भी जा सकते हैं। हाँ, ETF खरीदते हैं तो ज़रूर आप खरीदने से पहले देखिए कि क्या ये यूनिट्स NAV से बहुत ज़्यादा डिस्काउंट या प्रीमियम पे हैं। अगर प्रीमियम पे हैं तो आप समझिए कि आप एक्स्ट्रा खर्चा उठा रहे हैं। अगर 10 रुपए की एनएवी की चीज मार्केट में 12 रुपए पर ट्रेड हो रही है तो आप ये मानिए कि 10 रुपए का सामान आप 20% महंगा खरीद रहे हैं। तो ये इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एनएससी की वेबसाइट पे हर

0: फंड की आई नैव बताई जाती है. आई नैव होता है रियल टाइम एनएवी इस फंड की क्या होनी चाहिए, उससे आप क्लोजिंग प्राइस को कंपेयर कर ये आप निर्धारित कर सकते हैं.
1: और अब शंकर भोपाल से हमें कॉल कर रहे हैं. शंकर जी आपका स्वागत है, सवाल पूछें.
2: मेरा पहला सवाल बड़ा जनरल है, क्या एक फंड हाउस में हम दो बैंक डिटेल्स ऑपरेट कर सकते हैं क्या, सो दैट मेरी जब मर्जी हो जहां से मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहूं या जिधर मैं पैसा रखना चाहूं मेरा ही अकाउंट है दोनों, क्या दो अकाउंट एक ही म्यूचुअल फंड हाउस में जैसे कोटक या टाटा या कोई भी ऑपरेट कर सकते हैं क्या. दूसरा सवाल मेरा है सर, मेरा एक्चुअली कुछ इन्वेस्टमेंट टाटा में है, टाटा म्यूचुअल फंड, और कुछ एक्सिस में है, क्या इसमें कुछ अच्छे फंड हैं जो अच्छा कर रहे हैं, जैसे मिड कैप हुआ में की कैटेगरी में हुआ या लार्ज एंड मिड कैप हुआ एक्सिस में हुआ, तो इसमें कोई अच्छे फंड एक्सिस और टाटा इन दो में मेरा, तो बता सकते हैं क्या प्लीज, थैंक यू.
0: आपका पहला सवाल, क्या दो बैंक अकाउंट में ऑपरेट कर सकते हैं सेम एएमसी में, जी बिल्कुल. देखिए म्यूचुअल फंड्स में जो भी आपका इन्वेस्टर डिटेल होता है वो फोलियो लेवल पर मैप होता है, आपकी नॉमिनेशंस, आपकी बैंक अकाउंट डिटेल्स, ये सारी चीज़ें पर फोलियो होती हैं. तो आप अगर सेम फंड में भी दो अलग अलग फोलियो से आप इन्वेस्ट करते हैं तो ये पॉसिबल है कि आप दोनों फोलियो में अगर अलग अलग बैंक अकाउंट से आपने इन्वेस्ट किया है तो ये सारी फ्लेक्सिबिलिटी आपके पास है, आप बिल्कुल दो अकाउंट से मैनेज कर सकते हैं. बस ये आप ध्यान रखें कि जब भी आप किसी फोलियो में रिडम्पशन डालेंगे तो पैसा हमेशा उसी बैंक अकाउंट में आएगा जो उस फोलियो पे मैप्ड है. ये एक सिक्योरिटी मैकेनिज्म है क्योंकि पैसा हमेशा निवेशक के खाते में ही जाएगा और उसी खाते में जाएगा जो आपने अपने फोलियो में मैप किया हुआ है. तो आपको बस इस चीज़ का ध्यान रखना है. अगर आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगता है मल्टीपल बैंक अकाउंट्स को अपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स में मैप करना, तो ये फैसिलिटी आपके पास पॉसिबल है, ये फ्लेक्सिबिलिटी, और ये निर्णय आपका है. दूसरा टाटा एक्सिस, देखिए मैं आपको राय दूंगा कि बहुत ज़्यादा किसी एक एएमसी से आप के लिहाज में ना देखें. आप पहले देखिए कि आपका निवेश की ज़रूरत क्या है और किस तरह का फंड आपके लिए सूटेबल रहेगा, उसके बाद आप उस कैटेगरी के फंड्स में चुनाव करें. तो स्टार्टिंग पॉइंट ये नहीं होना चाहिए कि टाटा या एक्सिस या कोई और एएमसी, स्टार्टिंग पॉइंट ये होना चाहिए कि आपकी निवेश की ज़रूरत क्या है और उसके लिए सही फंड कौन सा है, वहां से अपने फंड के चुनाव की शुरुआत करें.
3: लेट्स आस्क जितेंद्र फ्रॉम जयपुर व्हाट हिज क्वेश्चन इज.
4: हां हेलो सर, जैसे इतना दिन मार्केट में सुनने के बाद ऐसा हमको लगा कि नए निवेशक के लिए सबसे पहले कोई इंडेक्स फंड ले या एग्रेसिव हाइब्रिड फंड ले, तो क्या अगर एग्रेसिव हाइब्रिड फंड की जगह इक्विटी सेविंग ले वो भी चलेगा, और निफ्टी 50 या जैसे कोई भी इंडेक्स फंड की जगह मिड कैप 150 इंडेक्स फंड ले तो क्या चलेगा क्या नए निवेशक के लिए?
0: जी पहला आपने पूछा इक्विटी सेविंग्स. देखिए इक्विटी सेविंग्स आप ले सकते हैं लेकिन आपको अपने रिटर्न एक्सपेक्टेशंस को कंट्रोल करना होगा. इक्विटी सेविंग्स फंड में आप मानिए कि आपका करीब 35-40% पैसा ही इक्विटी मार्केट का एक्सपोजर आपको मिलता है, बाकी जो इक्विटी का एक्सपोजर इन फंड्स में होता है वो डेरिवेटिव्स के जरिए हेज्ड रहता है, तो उसमें आपको मार्केट के रिटर्न्स, मार्केट गेन्स नहीं मिलते हैं. तो इक्विटी सेविंग्स फंड्स आमतौर पर कंजर्वेटिव निवेशक जो एक मॉडेस्ट रिटर्न विद मॉडेस्ट रिस्क की उनकी अभिलाषा रहती है, रेगुलर इनकम सीकर्स हैं उनके लिए इक्विटी सेविंग्स को आमतौर पर देखा जाता है कि एक अच्छी कैटेगरी माना जाता है. तो अगर आपको मॉडेस्ट रिटर्न्स चाहिए तो आप इक्विटी सेविंग्स की तरफ जा सकते हैं. देखिए शुरुआती निवेशक के लिए मेन एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स इसीलिए ही रिकमेंड किए जाते हैं क्योंकि जिन नए निवेशक हैं जिनको इक्विटी मार्केट्स के उतार चढ़ाव का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, उनके निवेश करते ही अगर मार्केट 20-25% कभी गिर जाती है तो वो निवेशक काफ़ी चांस होता है कि वो हताश होकर मार्केट को छोड़कर चले जाएंगे और फिर जिंदगी में शायद कभी वो इक्विटी मार्केट्स में वापस मुड़कर इन्वेस्ट नहीं करेंगे. तो इस पॉसिबिलिटी से बचे रहने के लिए एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स रिकमेंड किए जाते हैं क्योंकि इनमें 25% करीब पैसा आपका डेट में लगा रहता है, तो हमेशा ही जब भी मार्केट गिरती है फंड्स मार्केट से कुछ कम गिरते हैं तो एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज मिलता है नए इन्वेस्टर्स को. बाकी ये एडवांटेज इक्विटी सेविंग्स फंड में भी मिलेगा क्योंकि उनमें तो इक्विटी और भी कम होता है, लेकिन हाँ फिर आपको रिटर्न्स भी उनसे कम मिलेगा. दूसरा आपका सवाल इंडेक्स फंड में क्या मिड कैप इंडेक्स फंड की तरफ जा सकते हैं, फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर के लिए मेरी सलाह होगी नहीं, इसी रीजन से क्योंकि मिड कैप फंड्स में काफ़ी वॉलीटिलिटी रहेगी, अगर मार्केट गिरती है तो काफ़ी धड़ाम से गिर सकते हैं मिड कैप्स, तो सिर्फ इस रीजन से मैं आपको सलाह दूंगा कि एज अ फर्स्ट इन्वेस्टमेंट मिड कैप में इन्वेस्ट करने से बचें.
1: और असम से सुकृत है हमारे अगले कॉलर, आपका बहुत बहुत स्वागत, सवाल पूछिए.
5: गुड इवनिंग मैडम.
1: जी गुड इवनिंग.
5: जी मेरा सवाल ये है कि हमने चिल्ड्रेन बेनिफिट फंड मतलब SBI का वो म्यूचुअल फंड SIP किया था 4,000 करके, जी
1: जी,
5: तो उसमें से ये चिल्ड्रन फंड ये मेरे लिए कैसे रहेगा, बच्चे के लिए मतलब सही रहेगा या नहीं रहेगा? और उसके लिए मेरे पास कोई बॉन्ड पेपर तो नहीं है अभी, तो उसके लिए कौन सा कैसे मेरे को बॉन्ड पेपर डाउनलोड करके मतलब हार्ड पेपर रखना है, यही मेरा सवाल है
0: जी। बच्चे के लिए निवेश किया है, लंबे समय का निवेश है, तो उसमें कोई परेशानी नहीं है। लंबे समय के लिए आप धैर्य के साथ इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये एक इक्विटी फंड है। आप ये मानकर चलिए कि इक्विटी मार्केट्स के उतार चढ़ाव के साथ साथ ये जब मार्केट गिरेगी तब तब ये फंड भी गिरेगा, तो अगर आप वो उतार चढ़ाव को बर्दाश्त करने की क्षमता रखते हैं उससे आप बहुत हताश नहीं होंगे। लंबे समय के इन्वेस्टमेंट के लिए आप रख सकते हैं। आपको एक जैसे मैं समझ पाया हूं, देखिए म्यूचुअल फंड्स में कोई बॉन्ड पेपर इस तरह से या सर्टिफिकेट ऑफ ओनरशिप आपको नहीं मिलता है जैसे कि बॉन्ड्स में होता है। आप म्यूचुअल फंड कंपनी जिसमें भी आपका SBI में है तो आप SBI के इन्वेस्टर सर्विसेज में रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आपको एक वो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट ईमेल कर दें। आपके पास ईमेल पे आता भी होगा, अगर आपने अपने फोलियो में अपना ईमेल मैप किया हुआ है तो काफी संभावना है कि आपका जब जब भी इसमें निवेश होता है SIP इंस्टॉलमेंट जाती है, आपको एक स्टेटमेंट ईमेल करी जाती होगी। लेकिन अगर वो नहीं आ रही है तो आप SBI म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पर जाएं, वहां आपको इन्वेस्टर सर्विस सेंटर का नंबर मिलेगा, वो नंबर डायल करके आप उनको अपना फोलियो या कुछ जानकारी वो मांगेंगे और आप उनसे रिक्वेस्ट करेंगे आपको एक स्टेटमेंट इशू कर दें, आपको वो ईमेल पे मिल जाएगा।
1: हाँ, वो बॉन्ड मांग रहे हैं क्योंकि उन्होंने अभी बॉन्ड आपको लगता है फिजिकली होना चाहिए?
0: तो म्यूचुअल फंड्स में ऐसा कोई सर्टिफिकेट नहीं इशू किया जाता बॉन्ड्स की तरह, तो स्टेटमेंट आपका जो स्टेटमेंट होता है वही आपका ओनरशिप का एंटाइटलमेंट होता है।
3: लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट कॉलर फ्रॉम दिल्ली। विनोद जी सवाल पूछे।
6: पूरी मार्केट मंत्रा टीम को मेरी तरफ से नमस्कार।
3: जी नमस्कार।
6: मेरी एक्सपर्ट टीम से मेरा ये सवाल है कि रिबैलेंसिंग के बारे में, हम जैसे रिबैलेंसिंग करते हैं ना, तो उसमें एक तो टैक्सेशन का इशू आ जाता है और दूसरा वो जो फंड फिर हमारे सेविंग अकाउंट में आ जाता है वहां से खर्च हो जाता है, तो इसका कोई दूसरा रास्ता है कि टैक्सेशन से कैसे बचा जाए? और अगर हम लंबे समय तक रिबैलेंस ना करें तो इसका हमारी रिटर्न पे क्या प्रभाव पड़ता है? और एक सवाल और है कि अगर एक पर्टिकुलर फंड हाउस का हम स्विच करते हैं तो उसी फंड हाउस के सारे बाकी स्कीम्स दिखाता है वो, अगर मुझे किसी दूसरी फंड हाउस में जाना है तो कैसे करते हैं, स्विच करने में दिक्कत आती है?
0: जी देखिए, पहला सवाल आपका टैक्सेशन को लेकर, देखिए टैक्सेशन एक हकीकत है, आप उससे बच नहीं सकते हैं। हाँ, आपको ये देखना है कि आप रीबैलेंसिंग अगर आप डिसिप्लिन से करते हैं तो आप टैक्स से बच सकते हैं, उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। तो आप बहुत जल्दी अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस ना करें। शायद साल में आप अगर एक बार अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करते हैं, रीबैलेंस करते हैं, तो मेरा ख्याल वो पर्याप्त है। और अपना कोई रूल बनाइए कि जब भी आपकी एसेट एलोकेशन 7-10% से डेविएट करेगा तभी आप रीबैलेंस करेंगे, और साल में एक बार करेंगे। और रीबैलेंसिंग के लिए फिर आप वही फंड्स यूज करिए जिनमें जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की श्रेणी में आते हैं, वही यूनिट्स वही फंड्स के साथ आप करें। आपके पास 1,25,000 तक का एनीवेज टैक्स एग्जम्पशन है इक्विटी में, तो अगर आप ये सारे टूल्स यूज करते हैं, और उसके बाद आप दूसरा काम ये कर सकते हैं कि अपनी रीबैलेंसिंग को आप अगर किसी एक साल में रीबैलेंस करना पड़ रहा है, मार्केट में इतना उठा पटक हुआ है कि आपको रीबैलेंस करना पड़ेगा, तो दो अगर आप फाइनेंशियल ईयर में कुछ आप मार्च में अगर यूनिट्स बेचते हैं, कुछ अप्रैल में बेचते हैं, तो आपको दो फाइनेंशियल ईयर का 1,25,000 रुपए का कैपिटल गेन एग्जेम्पशन मिल जाता है, तो 2,50,000 तक का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आप एग्जेम्प्ट कर सकते हैं। तो कुछ इस टाइप की चीजें आप फॉलो कर अपना टैक्स मिनिमाइज जरूर कर सकते हैं। और दूसरी बात, आपने कहा कि अगर आप रीबैलेंस नहीं करते, तो देखिए आप रीबैलेंस अगर नहीं करते, मानिए आप 70% इक्विटी 30% डेट आपने अपने लिए एसेट एलोकेशन निर्धारित करी थी जिसके थ्रू आप इन्वेस्ट कर रहे थे, अब अगर इक्विटी मार्केट चल पड़ती है और ये 70% जो आपका वेटेज था ये बढ़कर 80% हो जाता है, तो वो आप थोड़ा सा एडिशनल रिस्क ले रहे हैं। बस इतना ही है कि आपका उसके बाद ज़्यादा आप इक्विटी में ओवर एक्सपोज्ड हो गए हैं एज अ पोर्टफोलियो। आपकी ज़रूरत के लिए क्या वो सही है, उचित है, या आपको रीबैलेंस करना आवश्यक है, ये आपकी निजी नीड्स क्या है, इन्वेस्टमेंट की आपका रिस्क एपिटाइट क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर आप नहीं करेंगे तो आपका रिस्क रिटर्न थोड़ा वेरी करेगा, उसको आपको देखना है।
1: अगले कॉलर है फरीदाबाद से मनिंदर। मनिंदर जी अपना सवाल पूछें।
7: हाँ सर, ये मैं जानना चाह रहा था कि स्विच आउट करने में कितना टाइम लेना चाहिए कंपनी को? सपोर्ट फोर्थ को हमने स्विच आउट किया है दूसरे फंड में, तो वो 2 दिन लगा देते हैं, तो क्या सही है?
0: जी ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर में इसी तरह होता है, क्योंकि आप जिस दिन सिप

0: से आप जिस दिन भी आप रिडम्पशन डालिएगा, तो अगर आप 3 बजे से पहले रिडम्पशन डालेंगे तो उस दिन जो रात को एनएवी फंड डिक्लेयर करेगा आपके, उस एनएवी पर आपकी यूनिट्स रिडीम होंगी। अगर 3 बजे, दोपहर 3 बजे के बाद अगर आप रिडम्पशन डालते हैं तो अगले दिन शाम की आपको एनएवी मिलेगी, और उसके बाद 1 से 2 दिन जो बैंक ट्रांसफर में पैसा लगता है, अगर बीच में छुट्टी आ जाती है, शनिवार इतवार आ जाता है, तो वो दिन इसमें ऐड होंगे। तो 2 से 3 दिन लगते हैं और ये नॉर्मल है।
1: All right, and now let's see how has been the movement of crude oil. Global crude oil prices declined last week following a deal between Iran and Oman to reopen the Strait of Hormuz. The two countries are also seeking to charge a fee on ships crossing the strait. During the week at the Intercontinental Exchange, ICE, Brent crude October futures plunged 5% to settle at $83.55 per barrel. West Texas intermediate crude September futures tumbled 7.7% to end at $78.18 per barrel.
2: स्टील एंड कमोडिटीज, सराफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में इस सप्ताह तेजी दिखाई दी। अमरीकी डॉलर में नरमी और अमेरिका के सरकारी बॉन्ड पर ब्याज दर में कमी के बीच सोने चांदी की कीमतों में बढ़त देखी गई। अमरीका के श्रम आंकड़े उम्मीद से कमजोर आने से अमरीकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दर में वृद्धि की आशंका कम हो गई और इससे भी निवेशकों की धारणा को बढ़ावा मिला। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अक्टूबर अनुबंध वाले सोने की कीमत सप्ताह के दौरान 5.9% के उछाल से 1,51,820 रुपए प्रति 10 ग्राम पर दर्ज हुई। इस बीच सितंबर अनुबंध वाली चांदी की कीमत 6.6% बढ़कर 2,31,466 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई। उधर कमोडिटी एक्सचेंज में दिसंबर अनुबंध वाला सोना सप्ताह के दौरान 7.1% की वृद्धि से $4,399.70 प्रति ट्रॉय आउंस पर पहुंचा। वहीं सितंबर अनुबंध वाली चांदी सप्ताह के दौरान लगभग 10% उछाल दर्ज करती हुई $63.49 प्रति ट्रॉय आउंस पर पहुंच गई।
1: All right, now let's take a quick look as to how the markets are expected to show up next week. The domestic investors are set to navigate a week packed with key market triggers, including macroeconomic data, quarterly earnings reports, and geopolitical developments. Markets are likely to take cues from foreign institutional investor inflows, commodity prices, and currency movements. Market participants will closely monitor monthly mutual fund data, the quarterly bulletin of the periodic labor force survey, and retail and wholesale inflation prints. Globally, investors will focus on geopolitical developments surrounding the West Asia conflict, along with oil market reports from the International Energy Agency and the Organization of the Petroleum Exporting Countries.
2: कार्यक्रम का समय समाप्त होने को है, सो चर्चा को भी अब हम यहीं विराम देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष जी, आप आए और आपने हमारे सभी श्रोताओं के विस्तृत सवालों के इतने अच्छे जवाब दिए।
0: जी धन्यवाद।
1: लिसनर्स, बिफोर वी रैप अप टुडेज शो, अ रिमाइंडर ऑफ द हेडलाइंस। Foreign portfolio investors infused over 12,900 crore rupees into Indian equities during first week of August. Global crude oil prices tumbled last week, and domestic investors to focus on inflation data, corporate earnings results, and geopolitical developments for cues next week. And that's all in today's edition of Market Mantra. See you tomorrow. Until then, goodbye.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।
4: You were listening to a repeat broadcast of today's Market Mantra program, originally aired at 6:30 p.m.
5: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
6: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।

11:41 हो चुके हैं। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर स्वागत है आप सबका एक बार फिर। प्रोग्राम गीत मेरे मनमीत, आपके साथ मैं विकास।

0: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
1: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
0: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
1: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।

प्रोग्राम का ये आखिरी गीत और इस मुसाफिर यानी विकास को दीजिए इजाजत इस वादे के साथ कि आप रखेंगे अपना ख्याल और उनका ख्याल जो रखते हैं आपका ख्याल। नमस्कार।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में अपने आवास पर राष्ट्रमंडल खेल 2026 के पदक विजेताओं से मुलाकात की। पदक विजेताओं ने प्रधानमंत्री के साथ बातचीत के दौरान खेलों से जुड़े अपने अनुभव साझा किए। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी खिलाड़ियों ने अपने शानदार प्रदर्शन से देश का मान बढ़ाया है और उनकी सफलता कई युवाओं को प्रेरित करेगी।
1: जो खेलेगा वो खिलेगा। ऑलवेज चीयर फॉर भारत। भारत माता की
2: जय।
1: भारत माता की
2: जय।
1: भारत माता की
2: जय।
0: इस मौके पर युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मांडविया और युवा मामले और खेल राज्य मंत्री रक्षा निखिल खड़से मौजूद थे। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में 23 जुलाई से 2 अगस्त तक आयोजित हुए इन खेलों में भारत पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। भारतीय खिलाड़ियों ने विभिन्न खेलों में कुल 39 पदक जीते, जिनमें 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। हर घर तिरंगा अभियान शुरू हो गया है। 17 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य देशवासियों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना है।

इस वर्ष ये अभियान राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ मनाया जा रहा है। देशभर में वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी होगा। दुनिया भर में 200 से अधिक भारतीय दूतावास, उच्चायोग और वाणिज्य दूतावास भी अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से इस अभियान में उत्साह के साथ शामिल होने और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने का संकल्प फिर से लेने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि तिरंगा देश का गौरव है। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि इस वर्ष का अभियान वंदे मातरम को समर्पित है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को यह स्पष्ट संदेश दिया है कि भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। नई दिल्ली में रक्षा मंत्री ने एक कार्यक्रम में ये बात कही। श्री सिंह ने भारतीय रक्षा बलों की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने पाकिस्तान में मौजूद आतंकवादियों और उनके आकाओं का सफाया किया और भारत पर बुरी नजर डालने वालों को गंभीर परिणाम भुगतने पड़े। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने कहा है कि पीएम आवास योजना शहरी और दूसरे चरण की पीएम आवास योजना शहरी के अंतर्गत अब तक 1,25,00,000 से अधिक मकानों को मंजूरी दी जा चुकी है। इनमें से 1,00,00,000 से ज्यादा मकान बनकर तैयार हो चुके हैं और लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं। इनमें करीब 1,00,00,000

0: मकान महिलाओं को आवंटित किए गए हैं। झारखंड सरकार और प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच झारखंड लोक सेवा आयोग JPSSC और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों की अधिकतर मांगों पर सहमति बन गई है। राज्य के मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा कि सरकार 14वीं JPSC प्रारंभिक परीक्षा और वर्ष 2023-25 की बैकलॉग परीक्षाओं को रद्द करने पर सहमत है। कल सरकार और छात्रों के बीच हुई वार्ता के बाद मंत्री ने कहा कि कथित वित्तीय अनियमितताओं की ईडी जांच करेगी और आपराधिक मामलों की CID जांच कराई जाएगी। साथ ही 90 दिनों के भीतर आरोप पत्र दाखिल करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने की बात भी कही गई है। मणिपुर पुलिस ने राज्य के कई इलाकों में घेराबंदी और तलाशी अभियान चलाया। इम्फाल वेस्ट जिले के खोइरुम सबल में मणिपुर पुलिस और 33वीं असम राइफल्स ने एक संयुक्त अभियान में 8 बंदूकें, एक 9mm पिस्तौल, एक दंगारोधी बंदूक और 4 हथगोला बरामद किए। एक अन्य अभियान में पुलिस ने इम्फाल ईस्ट जिले के पोर्ट शांगबंग खुनों की तलहटी में घेराबंदी और तलाशी अभियान के दौरान 1.32 पिस्तौल तथा बंदूक और 20 हथगोले बरामद किए। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आज और कल दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, असम, मेघालय, पूर्वी मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी तेज बारिश हो सकती है। IMD ने पूरे राज्य के लिए येलो वार्निंग जारी की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Abhineet Shukla. The Har Ghar Tiranga campaign is being celebrated across the country to promote patriotism, national unity, and India's rich cultural heritage.

0: आकाशवाणी दिल्ली के 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का एफएम गोल्ड चैनल। संग हूं मैं श्रेयसी और आइए सुनते हैं आज का ये कार्यक्रम।
1: प्रस्तुत है कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111।
2: पोस्ट बॉक्स नंबर 111।
3: नमस्कार, पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में मैं नीलम मलकानिया आप सभी का स्वागत करती हूं। साथियों, हम जानते ही हैं कि हमारा ये कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी के मन की बात का विस्तार है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बार मन की बात में हमारे बुनकर भाई बहनों का उत्साह वर्धन किया है और हथकरघा जो है उसका महत्व उन्होंने बताया है। साथ ही राष्ट्रीय हथकरघा दिवस जो कि समर्पित किया गया है बुनकर भाई बहनों को, उसका उल्लेख माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। आइए सबसे पहले मैं आपका परिचय करवाती हूं आज स्टूडियो में हमारे विशेषज्ञ से, और उसके बाद हम आपको सुनवाएंगे मन की बात का वो हिस्सा जिसमें हमारे बुनकर भाई बहनों का विशेष तौर पर उल्लेख किया गया है। आज स्टूडियो में हमें समय दिया है हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर एम बीना, आप प्रशासनिक अधिकारी हैं और विकास आयुक्त हैं हथकरघा से। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में।
4: नमस्कार।
3: आइए अब हम अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं मन की बात का एक अंश।
5: मेरे प्यारे देशवासियों, 7 अगस्त को हमारा देश नेशनल हैंडलूम डे मनाता है। इस अवसर पर हम अपने बुनकर भाई बहनों के कौशल और उनकी सृजनशीलता का उत्सव मनाते हैं। हमारे ये साथी पीढ़ियों से चली आ रही परंपराओं को आगे बढ़ा रहे हैं। साथियों, हथकरघे से बना हर परिधान किसी न किसी क्षेत्र, समुदाय और इससे जुड़े असंख्य लोगों की कहानी को सामने लाता है। ये वो लोग हैं जो गर्व के साथ भारत की सांस्कृतिक विरासत को संजोने में जुटे हैं। आज के दिन मेरा आग्रह है कि हम हस्तकला को प्रोत्साहित कर अपने बुनकर साथियों का सम्मान करें। आइए हम वोकल फॉर लोकल की भावना को

0: और सशक्त करें। साथियों, आज देश में जिस तरह हैंडलूम को बढ़ावा दिया जा रहा है, उससे बड़ी संख्या में लोगों का जीवन बेहतर हो रहा है। पोचमपल्ली से पटना और कुथमपल्ली से कच्छ तक इसके कई उदाहरण देखने को मिलते हैं। आज ऐसे कई लोग और समूह हैं जो हैंडलूम की हमारी गौरवशाली परंपरा को नई ऊर्जा और पहचान दे रहे हैं। कोई पोचमपल्ली इकत की सुंदर परंपरा को आगे बढ़ा रहा है, तो कोई महिला बुनकरों को जोड़कर वूल प्रोडक्ट्स बना रहा है। कुछ लोग केरलम की पारंपरिक कसाऊ कला को संरक्षित कर रहे हैं, इससे हमारी माताओं बहनों को रोजगार भी मिल रहा है। साथियों, एक और विषय जिसका मैं विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूंगा, वह है खादी। हम सभी जानते हैं कि खादी महात्मा गांधी को बहुत प्रिय थी। बीते कुछ वर्षों में खादी काफी लोकप्रिय हुई है। पिछले 12 वर्षों में इसकी बिक्री 6 गुना बढ़ी है। बिक्री का यह आंकड़ा अब 8,000 करोड़ रुपए के करीब पहुंच चुका है। मेरा आप सभी से आग्रह है कि आने वाले त्योहार में खादी का कोई न कोई, हैंडलूम का कोई न कोई, हैंडीक्राफ्ट का कोई न कोई प्रोडक्ट जरूर खरीदें।
1: तो साथियों, आपने सुना कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रीय हथकरघा दिवस का उल्लेख करते हुए इसके संदर्भ में बुनकर भाई बहनों के विशेष हितों का भी एक तरह से उल्लेख किया है। तो इस बारे में हम और जानते हैं। आज इस कार्यक्रम में बात करते हैं उस धागे की जो सिर्फ कपड़ा नहीं बुनता, बल्कि भारत की विरासत, संस्कृति और लाखों परिवारों के सपनों को बुनता है। सामाजिक ताने बाने का हिस्सा वो धागा जो हमारी विरासत भी है और साथ ही हमारी जिम्मेदारी भी है। स्वदेशी आंदोलन से लेकर वैश्विक पहचान तक ये धागा भारत में और भारतीयता भर देता है। महात्मा गांधी ने चरखा चलाते हुए जन जन को जोड़ा और साथ ही स्वदेशी का महत्व बताया। स्वदेशी आंदोलन आगे बढ़ा और उसके बाद एक से एक बढ़कर उपलब्धि जो हमें हासिल हुई है, और आज हम कहते हैं कि भारतीय वस्त्र की पहचान वैश्विक पहचान है, तो ये भी हमने हासिल की है अपने बुनकर भाई बहनों के परिश्रम से ही। तो इसके बारे में हम बात करते हैं। डॉक्टर एम बीना, मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगी मैडम कि हमारा जो विभाग है और हमारा जो मंत्रालय है, वो किस तरह से हमारे जो बुनकर भाई बहन है उनके लिए कार्य करता है।
2: ऑफिस ऑफ डीसी हैंडलूम मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स के अंडर काम करने वाला विभाग है, एंड उसका पूर्णतः लक्ष्य ये है कि ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द हैंडलूम सेक्टर। तो उसमें हमें हैंडलूम को भी बढ़ावा देना है और हैंडलूम के जो वीवर्स है उनकी भी मदद करना है, ये हमारा पूर्णतः लक्ष्य है
1: जी।
2: तो इसमें हमारे दो प्रधान कार्यक्रम है, एक तो नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट प्रोग्राम जिसमें हम देते हैं एंड टू एंड सपोर्ट वीवर्स को, स्किलिंग देते हैं उनको, मार्केटिंग असिस्टेंस देते हैं उनको, करखे नए करखे देते हैं उनको, वर्कशीट्स दिया जाता है, तो उस तरह के बहुत सारे कार्यक्रम हैं। दूसरा, हम तभी बुनाई शुरू करेंगे जब हमारे पास धागा होगा
1: जी।
2: तो सबसे एक बड़ा चैलेंज है बुनकर को कि धागा रॉ मटेरियल को आपूर्तिकरण के लिए, तो इसके लिए हमारा दूसरा स्कीम है रॉ मटेरियल सप्लाई स्कीम, जिसके तहत हम देते हैं 15% प्राइस सब्सिडी और ट्रांसपोर्टेशन सब्सिडी। तो ये तो हमारे बड़े कार्यक्रम है जो हर स्टेट में चलाया जाता है, हर क्लस्टर में चलाया जाता है, तो इसी से हमारे वीवर्स को बहुत मदद मिलती है
1: जी। जब हम बात करते हैं मैम वीवर्स की, तो आमतौर पर देखा जाता है कि ज्यादातर बुनकर अपने पूर्वजों से सीखकर ये कार्य कर रहे हैं और बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते कई बार, तो उन्हें पता नहीं चलता कि सरकारी योजनाओं का लाभ कैसे लिया जा सकता है। हम चाहेंगे कि आज हमारे कार्यक्रम के माध्यम से वो सीधे आपसे सुने कि ऐसी क्या योजनाएं हैं जिनका लाभ वो उठा सकते हैं।
2: तो हमारे जो भी स्कीम्स है वो अंततः वीवर का ही इसमें बेनिफिट होता है
1: जी।
2: जो वीवर ये नहीं जानते, काफी वीवर्स जानते हैं, लेकिन जो वीवर अभी ये कार्यक्रम सुन रहे हैं उनसे मुझे ये बोलना है कि आपका जो भी रिक्वायरमेंट है, देखो एक वीवर को नॉर्मली क्या चाहिए, उनको तो पहले धागा चाहिए
1: जी।
2: तो धागे के लिए अगर आपको मदद चाहिए तो हमारा रॉ मटेरियल सप्लाई स्कीम के तहत दो तरह की सब्सिडी दिया जाता है। तो एक तो है आपका प्राइस सब्सिडी। प्राइस सब्सिडी उन धागों को दिया जाता है जो नेचुरल फाइबर्स है
1: जी।
2: जैसे कि कपास हो गया, सिल्क हो गया, जूट हो गया, लिनन हो गया, क्योंकि ये नेचुरल फाइबर्स है हम उनमें 15% प्राइस सब्सिडी देते हैं। जैसे कि अगर आप एक्रिलिक पे काम कर रहे हैं, आप सिंथेटिक पे काम कर रहे हैं, उसको भी हम सपोर्ट करेंगे, लेकिन उसमें हम बस ट्रांसपोर्टेशन सब्सिडी देते हैं। माने आपको धागा मिल जाएगा मिल गेट प्राइस पे। तो ये है हमारा फर्स्ट प्रधान कार्यक्रम
1: जी।
2: तो दूसरा, आपका जो हथकरघा है अगर वो पुराना हो गया, या फिर अगर आप बहुत आउटडेटेड लूम पे काम कर रहे हैं तो आपको नया हथकरघा की जरूरत है, तो वो हम आपको दे सकते हैं हमारे क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत। दूसरा, बहुत सारे घरों में अब ये देखा जा रहा है कि घर नए बन रहे हैं, तो घर में टीवी आ गया, सोफा आ गया, सब आ गया, अब हथकरघा के लिए जगह नहीं है
1: जी।
2: तो हम एक वर्कशेड का भी एक कार्यक्रम है जहां हम 1,20,000 तक वर्कशेड में मदद देते हैं, जिसका 90% सरकार की ओर से जाता है और 10% वीवर को बेयर करना पड़ता है। तीसरा है, हमारे बुनकर काम करते हैं तो उनको लाइट की जरूरत है
1: जी।
2: तो इसके लिए सोलार लाइटिंग का भी एक कार्यक्रम है जहां हम अप टू 15,000 सोलार लाइट के लिए भी देते हैं। तो ये अपने घरों में बैठकर ये तीन आपको मिल जाएंगे
1: जी।
2: लेकिन इसके अलावा हमें डिजाइन डेवलपमेंट करना पड़ता है, मार्केटिंग करना पड़ता है
1: जी।
2: तो इसके भी कार्यक्रम है। अब मार्केटिंग में हमारे बहुत सारे मेले लगते हैं, आपने सुना होगा गांधी बुनकर मेला जो जिला स्तर पर होता है, फिर राज्य स्तर पर होता है, और नेशनल हैंडलूम एक्सपो अपने दिल्ली खाट में भी देखा होगा, हमारे बुनकर भाई लोग आते हैं। तो इन सब के लिए मार्केटिंग असिस्टेंस के लिए एक तो अपना राज्य सरकार को भी हम पैसे देते हैं इस आसूत्रण करने के लिए, तो इधर राज्य सरकार द्वारा वो अप्लाई करे, या फिर हमारा एक पोर्टल होता है दिल्ली हाट वगैरह, और जो भी नेशनल लेवल पे जो मिले होते हैं उसके एप्लीकेशन के लिए दे हैव टू अप्लाई थ्रू दी नेशनल पोर्टल। ये हो गया मार्केटिंग। नाउ अब ये है कि आपको अपना जो प्रोडक्ट है उसमें, देखो आजकल ना बहुत सारे फेक हैंडलूम भी चलते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो जब तक बुनकर अपने प्रोडक्ट पे हैंडलूम मार्क नहीं लगाएगा, तो हैंडलूम मार्क लगाने से जनता ये जान जाएगी कि ये ऑथेंटिक है
1: जी।
2: तो हैंडलूम मार्क के लिए भी प्रावधान है हमारे स्कीम में, हमारे लिए टेक्सटाइल कमेटी हैंडलूम ब्रांड का वो कार्यक्रम चलाती है। एंड कुछ ऐसे भी वीवर्स हैं जो बहुत अच्छे हैं एंड जो इंटरनेशनल लेवल पे जाना चाहते हैं
1: जी,
2: तो उसके लिए भी प्रावधान है हमारा इंटरनेशनल मार्केटिंग स्कीम। तो वहां हमारा हैंडलूम एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल द्वारा इनका चयन होता है और उनको बाहर भेजा जाता है। और एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है हमारा अवार्ड्स
1: जी।
2: एक्चुअली ये जो 7 अगस्त है, सारे वीवर्स इसको मनाते हैं क्योंकि उनको अवार्ड्स मिल जाते हैं उस
1: जी।
2: हमारे दो अवार्ड्स है, एक तो संत कबीर अवार्ड और दूसरा है नेशनल अवार्ड। तो ये जो अवार्ड का कार्यक्रम, जो बहुत हुनरशाली वीवर्स है उनके सपोर्ट के लिए ये अवार्ड वाला कार्यक्रम है। और एक बहुत इम्पोर्टेंट जो सेक्टर है, वेलफेयर ऑफ द वीवर्स
1: जी।
2: अब वेलफेयर में भी हमारे 2-3 हिस्से है, हमारा एक अम्ब्रेला स्कीम है और हम ये कोशिश करते हैं कि एंड टू एंड वीवर को मदद मिले। अब वेलफेयर में एक तो है, हम इंश्योरेंस में हम उनका सपोर्ट करते हैं, तो दो प्रधान हमारे इंश्योरेंस प्रोग्राम्स है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना
1: जी।
2: तो इन दोनों में हम जो वीवर को प्रीमियम देना होता है उसका एक, इन सुरक्षा बीमा योजना हम पूरा केंद्र सरकार देता है, एंड इन जीवन ज्योति बीमा योजना इट इज अ शेयरिंग बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट
1: जी।
2: तो ये एक और है। दूसरा, अगर आप अवार्डी वीवर है और अगर आपके पास वो इनकम कम है, तो आपको प्रति मास 8,000 रुपीस का असिस्टेंस मिलता है ओवर 60 इयर्स
1: जी।
2: तीसरा है हमारा स्कॉलरशिप, अगर एक बुनकर के बेटे को टेक्सटाइल में पढ़ाई करनी है, चाहे वो डिग्री लेवल पर हो, डिप्लोमा हो या फिर हायर स्टडीज हो, तो वी सपोर्ट अप टू 2 लाख पर ईयर फॉर अ वीवर स्टूडेंट, अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन पर वीवर। तो ये हो गया हमारा वेलफेयर कार्यक्रम। और लास्ट में एक और कार्यक्रम है हमारा मुद्रा स्कीम। तो वीवर्स मुद्रा स्कीम में हम, देयर इज अ प्रोविजन फॉर गिविंग मार्जिन मनी, देयर इज अ प्रोविजन फॉर गिविंग इंटरेस्ट सबवेंशन, देयर इज अ प्रोविजन फॉर गिविंग क्रेडिट गारंटी। तो मैंने बहुत कॉम्प्रिहेंसिव से स्कीम्स है, अगर बुनकर को ज्यादा इन्फॉर्मेशन की जरूरत है हमारे हर राज्य में देयर इज अ बुनकर सेवा केंद्र
1: जी,
2: वीवर सर्विस सेंटर, वहां पर उनको ज्यादा जानकारी मिल सके
1: जी। यानी एक बुनकर के जीवन में जितने पहलू हो सकते हैं सभी इन योजनाओं के माध्यम से आपने कवर करने की कोशिश की है और हर जगह कुछ ना कुछ मदद उपलब्ध करवाई जा रही है
2: जी।
1: ये रोचक जानकारी हमारे बुनकर भाई बहनों के लिए बहुत ही जरूरी थी और बातचीत हमारी जारी रहेगी। मैं यहाँ आपसे आपकी पसंद का

0: गाना पूछना चाहूंगी ताकि हम श्रोताओं को सुनवा सकें।
1: मेरी मातृभाषा मलयालम है
0: जी,
1: लेकिन हिंदी के सॉन्ग्स मुझे बहुत पसंद है। जब मैं छोटी लड़की थी तब से ये विविध भारती में जो भी गाने आते हैं, तो एक्चुअली हिंदी जानने से पहले हिंदी के गाने, मैं सुनती हूँ। और आज के दिन आई थिंक मैं ये बोलूँ कि मोह मोह के धागे आज के सब्जेक्ट कॉन्टेक्स्ट में बहुत रिलेवेंट है।
0: सच में
1: आई विल रेकमेंड दैट।
0: और इससे हम ये भी समझ सकते हैं मैम कि जो विभाग आप संभाल रही हैं उससे आपका कितना मोह है ये धागे लोगों के कल्याण के धागे।

0: तो इस प्यारे से गाने के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में। आज इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं स्वदेशी आंदोलन से वैश्विक पहचान बनाने वाले उन धागों की जो हथकरघा से हम तक पहुंचते हैं। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के संदर्भ में ये हमारा एक विशेष कार्यक्रम है और साथ ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में उल्लेख किया है हथकरघा दिवस का। बुनकर भाई बहन जो हैं उनके कल्याण के लिए क्या योजनाएं हैं, इस बारे में हम जान रहे हैं हमारे विशेषज्ञ से। आज की मेहमान इस कार्यक्रम में है डॉक्टर एम बीना, आप प्रशासनिक अधिकारी हैं और साथ ही डेवलपमेंट कमिश्नर हैं हैंडलूम में। तो मैम, मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा कि जब किसी भी चीज को प्रचलित करने की बात करते हैं तो भारत में हम युवाओं को जरूर अपने साथ जोड़ते हैं, क्योंकि व्यवहार में वो चीजें उन्हीं के माध्यम से प्रसार पाती हैं। ऐसे में क्या इस तरह की कुछ योजनाएं हैं जो कि शैक्षणिक स्तर पर हथकरघा से या बुनकरों से जोड़ रही हैं छात्रों को, विद्यार्थियों को?
1: ये बहुत अहम सवाल आपने उठाया। देखो, हम हथकरघा हमारी विरासत है, हैंडलूम इसे इंटरनेशनली एक्सेप्टेड था एक जमाने में
0: जी,
1: लेकिन अब वो कम होता जा रहा है। लेकिन अगर ये लुप्त हो गया तो ये सदा के लिए नष्ट हो जाएगा। तो ये नई पीढ़ी की ये जिम्मेदारी है कि इसको आगे लेके चले
0: जी।
1: तो उसके लिए हमें क्या कर रहे हैं कि उसको पॉपुलराइज करने के लिए, एक तो हमने अपने ओर से कुछ शिक्षा संस्थान हमने स्टार्ट किए हैं। दीज आर द इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी
0: जी।
1: तो सेंट्रल गवर्नमेंट के 6 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजीज है और स्टेट गवर्नमेंट और 5 IHDs चलाते हैं। तो यहाँ पे जो शिक्षा दिया जाता है वो हैंडलूम पे और टेक्सटाइल पे बहुत अच्छे से, डिप्लोमा भी चलता है, डिग्री भी का भी कोर्स है। तो ये एक ओर से हम ये कर रहे हैं। दूसरा, हमारा जो बुनकर सेवा केंद्र है तो उनका हमेशा ये प्रयास रहता है कि आसपास जो भी जनरल कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, तो वहां के बच्चों को जाके वो क्राफ्ट डेमोन्स्ट्रेट करते हैं ताकि वो देख सके। को बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कभी हथकरघा को देखा ही नहीं है, कैसे चलता है वो उनको मालूम ही नहीं है। लेकिन आई थिंक ये जो हम बात कर रहे हैं आज के कॉन्टेक्स्ट में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस लेता है कि आज का जो जमाना है वो सस्टेनेबिलिटी, सर्कुलरिटी के ओर चल रहा है। एंड आज के जेंसी एनवायरमेंटली बहुत कॉन्शियस हैं, तो ये चाहते हैं कि देखो हमारे जमाने में किसी का पहना हुआ हम पहने की वो सोच भी नहीं सकते थे
0: जी।
1: लेकिन आज ये ऐसा जमाना आ गया कि जेंसी इज थिंकिंग ऑफ रीयूजिंग, कंजर्वेशन, तो बहुत उनकी सोच में क्रांतिकारी चेंजेस आ रहे हैं। द मैसेज दैट वी आर गिविंग टू द यूथ इस हैंडलूम में जो बनता है इट इज कार्बन न्यूट्रल, बिकॉज वीविंग में तो हम पावर यूज नहीं कर रहे हैं। तो ये जो है इट इज वेरी सस्टेनेबल, इट इंटीग्रेट सर्कुलरिटी। तो ये मैसेज हम देना चाह रहे हैं अपने यूथ को। खासकर हमारा एक प्रोग्राम भी ऐसा ही है, वीव द फ्यूचर
0: जी।
1: तो वीव द फ्यूचर में हम जो अपसाइक्लिंग रिसाइक्लिंग में जो ब्रांड्स है जो हैंडलूम में काम करते हैं हम उनको मिला के दिल्ली हाट में, कभी क्राफ्ट म्यूजियम में, ताकि ये लगातार ये कॉन्वर्सेशन चलता रहे कि हैंडलूम इज इंटेग्रल टू सस्टेनेबिलिटी। तो ये हो गया था सस्टेनेबिलिटी कॉम्पोनेंट ऑफ अट्रैक्टिंग यूथ। बट दूसरा, जब तक हम साड़ी पर ही रहेंगे तो यूथ थोड़ा सा इसमें आने से कतराएंगे। तो इसीलिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने प्रोडक्ट्स को डाइवर्सिफाई करें। तो हमारे मेरे बुनकर भाइयों से ये रिक्वेस्ट है कि आप साड़ियां बहुत अच्छा बनाते हैं, मैं बहुत पसंद भी करती हूँ, लेकिन जमाना आ गया है कि आप अपना फैब्रिक को नए तरीके से प्रेजेंट करें, उसमें जो आज के जेंसी पसंद करते हैं
0: जी,
1: तो उस तरह का भी आप काम करें। हमारे विभाग से डिजाइनर्स मौजूद है क्लस्टर लेवल पे, तो उनकी मदद लेके

0: अब नया काम करने की भी कोशिश करें
1: जी।
0: और दूसरा, मैं बुनकर भाइयों के बच्चों से, जो युवा पीढ़ी है, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आपको अगर वीविंग नहीं भी आती हो, लेकिन अपने पिताजी से, अपने माताजी से उनका जो हुनर है वो अंडरस्टैंड करें और उसको एटलीस्ट इंस्टा पेज तो वो बना सकते हैं
1: जी,
0: वो एटलीस्ट ऑनलाइन मार्केटिंग तो वो कर सकते हैं। तो ये मेरी विनती है देश की युवा पीढ़ी से।
1: जी, और कुछ समय पहले हमें एक छात्र से बात करने का अवसर मिला था, तो उन्होंने यही बताया कि NID, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइनिंग, उन्होंने कहा कि इस तरह के संस्थान बड़ी भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि जब फैशन शोज होते हैं, हम फैशनेबल कपड़े बना रहे होते हैं, तो उनके पैटर्न्स में भी हम इस तरह की वीविंग्स यूज कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा आपने कहा कि जो बुनकर हैं उनके बच्चे भी इसमें बड़ी भूमिका निभा सकते हैं।
0: एक्चुअली आपने अच्छा, देखो दरअसल निफ्ट नाम की संस्था
1: जी,
0: तो निफ्ट के साथ हमने एक बहुत अच्छा एक प्रोग्राम हम चलाते हैं, यह है क्राफ्ट क्लस्टर इनिशिएटिव। तो निफ्ट का हर एक बच्चा किसी न किसी आइदर हैंडलूम क्लस्टर या हैंडीक्राफ्ट क्लस्टर में जाते हैं, वो समझते हैं कि ये कैसे किया जाता है, एंड कुछ इनपुट्स वीवर को भी मिलता है, कुछ सीख बच्चे को भी मिलता है। एंड इस एसोसिएशन से हमने ये देखा कि एक बच्ची थी जो गुजरात में निफ्ट में पढ़ी थी, तो उसके बाद After studying, she जी. has started an e-commerce portal for all the weavers.
1: जी.
0: And इतना अच्छा उसका turnover आज आ गया है, इतना successful हो गया है. This is such a lovely example कि बच्चे, जब युवा, the young blood and innovation comes into the picture, it really transforms the entire sector.
1: जी, बिल्कुल। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारे युवा साथी जो इस समय हमें सुन रहे हैं, वो ये समझेंगे कि उनकी ऊर्जा की जरूरत हमारे बुनकर भाई बहनों को भी है और उनके नए विचारों की जरूरत भी है। पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में आज इस कार्यक्रम में हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर एम बीना, IAS ऑफिसर हैं मैम, और साथ ही डेवलपमेंट कमिश्नर हैं, विकास आयुक्त हैं हथकरघा की। और आज हम बात कर रहे हैं स्वदेशी आंदोलन से वैश्विक पहचान तक पहुंचे उन धागों की, जो हमारे बुनकरों को समाज से जोड़ते हैं और समाज के अलग अलग वर्गों को भी आपस में जोड़ते हैं। अभी हम बात कर रहे थे मैम इस गाने से पहले कि किस तरह से हम ट्रेंड पे ला सकते हैं अपने हैंडलूम को। आजकल जब युवा आपस में मिलते हैं, या पहले भी हमारी संस्कृति का हिस्सा रहा है, हमारे घर अतिथि आते हैं या हम किसी के घर जाते हैं तो कुछ भेंट हम देते हैं, ऐसे में आप क्या कहेंगी हम हथकरघा से बुने हुए उत्पादों को कैसे शामिल कर सकते हैं?
0: इसका सबसे अच्छा उदाहरण हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं।
1: जी,
0: वे जब भी बाहर जाते हैं या फिर बाहर से कोई लीडर्स इंडिया में आते हैं, तो हमेशा उनका गिफ्ट जो है आइदर हैंडलूम का होता है या फिर हैंडीक्राफ्ट का होता है। तो हम तो बोलते हैं कि हमारा सबसे अच्छा ब्रांड एम्बेसडर अपने प्रधानमंत्री जी ही हैं।
1: जी,
0: तो वो एक्चुअली अच्छा उदाहरण है। जब भी हमें तोहफा देना होता है
1: जी,
0: तो मेरा ये रिक्वेस्ट है, बहुत सारे कंपनीज हैं इंडिया में जो दिवाली पर गिफ्टिंग करते हैं, कॉर्पोरेट गिफ्टिंग करते हैं, तो अपना जो ट्रेडिशन है उसको भेंट करें। तो कुछ लोग करते भी हैं, एंड कुछ ऐसे भी कंपनीज हैं जिन्होंने अपने CSR के द्वारा कंपनीज खड़े किए हैं या फिर संस्थाएं खड़े किए हैं फॉर इंडियन हैंडलूम्स, चाहे वो आदियम हो चाहे तनेरा हो, तो ऐसे भी प्रयास हो रहे हैं। बट गिफ्टिंग के लिए दिवाली अब आने को है, तो अभी से आप अपना प्रोक्योरमेंट शुरू कीजिए, अपना कहने हम जो भी करें अपने आइडेंटिटी को याद करें। जब हम आइडेंटिटी को याद करेंगे, अपने रूट्स को याद करेंगे, तो हथकरघा तो ऑटोमेटिकली उसमें आ जाता है।
1: जी, ऐसे में मैम हमारे संस्थान का भी मैं यहाँ पर उल्लेख करना चाहूंगी, हमारे यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम बहुत होते हैं, लेकिन हम ये ध्यान रखते हैं कि हमारे जो भी अतिथि होते हैं उन्हें हम अंगवस्त्र जो है वो हैंडलूम से दें और सिर्फ पौधा भेंट करें, बाकी जो प्रतीक चिन्ह है उनके अतिरिक्त।
0: बहुत अच्छा,
1: तो ये भी हम आपस में ध्यान रख सकते हैं। और जेंजी जो है, जैसा कि मैम ने कहा कि बहुत तेजी से आप चीजों का प्रसार करते हैं, तो ऐसे में जो अपनी पहचान है, हर राज्य के अपने अलग ऐसे धागे हैं जिन पर हमें गर्व है, हर राज्य का अलग पैटर्न है, तो हम उसके बारे में जाने और उसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। मैम हम जब अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की बात करते हैं, ऐसे में इस बात पर भी विशेष ध्यान देते हैं कि इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स जो हैं वो ज्यादा से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहुंचे और हमारा कार्बन फुटप्रिंट कम हो, ऐसे में क्या इस तरह की नीतियां हैं कि हमारा हैंडलूम विदेशी बाजारों में भी अपनी पहचान भी बनाए रखे और ज्यादा विस्तृत पहुंचे?
0: हैंडलूम का जो सस्टेनेबिलिटी एंगल है वो मोर देन इंडिया, एक्चुअली फॉरेनर्स उसको ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं
1: जी।
0: लेकिन पहले हमारा ये इश्यू था कि हमारे पास ना कोई रिपोर्ट था ना कोई स्टडी था जो एक्चुअली ये बता सके कि हैंडलूम पे जब कपड़े बुनते हैं तो उसका कार्बन फुटप्रिंट क्या है
1: जी।

0: सो लास्ट ईयर हमने इसी अराउंड दिस टाइम IIT दिल्ली द्वारा हमने एक स्टडी संचालित किया था, तो उसका ये रिजल्ट आ गया है कि अगर हम हैंडलूम पे कपड़ा बुने कंपेयर्ड टू मिल मेड, इट इज अराउंड लेस देन 1/4 ऑफ द कार्बन फुटप्रिंट। तो ये जो है, एंड इसका सर्टिफिकेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, इंटरनेशनल मार्केट्स अब पूरी तरह दे आर लुकिंग एट सर्कुलरिटी एंड सस्टेनेबिलिटी, खासकर यूरोप में जो देश है, UK जो है वो बहुत इस पर इंसिस्ट करने वाले हैं इन द कमिंग ईयर्स। तो अभी एक्सपोर्टर्स आर ऑल्सो कॉन्शियस। हाल ही में भारतटेक्स हुआ था, जो हमारा एक बहुत बड़ा इवेंट था जो एक्सपोर्ट पे फोकस करता था, तो वहां पर भी ये बार बार हर मीटिंग में ये दोहराया गया कि सर्कुलरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ द चैलेंज बिफोर अस इज टू इंटेग्रेट सस्टेनेबिलिटी इनटू द हैंडलूम। तो इनहेरेंटली सस्टेनेबल है, लेकिन उसको सर्टिफिकेशंस, क्वालिटी चेकिंग एंड वो एक्सपोर्टेबल लेवल तक उसको लेके आना है। तो हैंडलूम एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल इसमें बहुत काम कर रहे हैं, एंड हम ये भी अभी एक नेक्स्ट ईयर फ्रांस में एक बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है, प्रीमियर विजन। तो इंडिया हैज द हैंडलूम डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया इज नाउ अ पार्टनर फॉर प्रीमियर विजन, एंड वी विल बी शोकेसिंग इट बिफोर एन इंटरनेशनल ऑडियंस कि हमारा हैंडलूम क्या है, विरासत क्या है, प्लस उसका सस्टेनेबिलिटी एंगल क्या है।
1: एक बड़ी समस्या आजकल व्यवहारिक तौर पर ये आती है मैम कि घर में आम तौर पर जो कामकाजी महिलाएं हैं उनके पास भी, बच्चों के पास बहुत सारे कपड़े होते हैं, और ऐसे में फैशन भी तेजी से बदलता है, तो हमारा वार्डरोब चेंज होता रहता है। एक चुनौती होती है कि जो पुराने कपड़े हैं, जो पहनने की स्थिति में है, उनका हम क्या करें। क्या ऐसा कुछ किया जा सकता है कि अगर हथकरघा के उत्पाद हैं तो वो कहीं उचित माध्यम से पहुंचाए जा सके और उनका रीयूज हो सके, बजाय इसके कि हम उन्हें फेंके या किसी को दें।
0: एक्चुअली ये रीयूज का कल्चर, रिसाइकलिंग का जो कल्चर है, तो हाल ही में हमने एक इवेंट किया था वीव द फ्यूचर। तो वीव द फ्यूचर में हमने क्या किया, वी केप्ट अ बॉक्स
1: जी,
0: ताकि आपके जो यूज्ड कपड़े हैं आप वहां दे दीजिए, एंड वी कलेक्टेड यूज कपड़े एंड वी स्टार्टेड, इट इज गिवन टू आवर रिसाइकलिंग सेंटर्स। तो अभी ऐसे प्रयास चल रहे हैं हमारे जो सिटीज में, कुछ ऐसे चल रहे हैं। एंड हमने एक ऑक्शन भी किया था, जो हमारा कुछ सीनियर ऑफिशियल्स ने कुछ कपड़े डोनेट किए थे, तो उसका हमने ऑनलाइन ऑक्शन भी किया था, जो भी बहुत सक्सेसफुल था। तो ऐसे प्रयास हो रहे हैं, एंड खासकर हैंडलूम्स का इससे जो मिलता है कि ऐसे अगर रिसाइकल धागे होते हैं वो नॉर्मली जो बड़े मशीन में वो चलेगा नहीं, द बिग मशीन में वो ज्यादा ब्रेकेज और श्रिंकेज होता है, तो उसके लिए हथकरघा ही मोर सूटेबल है। तो इसलिए हैंडलूम एंड ये रिसाइकलिंग सब साथ में लेके चलते हैं। एंड वीव द फ्यूचर के अभी तक हमने 4 एडिशंस किए हैं, अब ये 5th एडिशन विल बी लॉन्च्ड अलोंग विद द नेशनल हैंडलूम डे।
1: जी, हमारी एक ऑब्जर्वेशन ये भी है, जैसे गांधी स्मृति और राजघाट पर जो संस्थान है वो चरखे का उपयोग अभी भी करते हैं खादी को बढ़ावा देने के लिए और बच्चों को ये सिखाने के लिए कि कैसे काता जाता है, कताई क्या होती है, कतान किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। क्या इस तरह की एग्जीबिशंस होती हैं जहां पर वॉलेंटरली जाकर युवा जो हैं वो सीख सकें कि हथकरघा कैसे चलाना है, भले ही वो उनका पेशा नहीं है।
0: एक्चुअली आपका सजेशन बहुत अच्छा है, एंड अभी सेंट्रल कॉटेज एम्पोरी में हमारा एक एग्जीबिशन है द वीव्स ऑफ इंडिया, तो वहां पर वी हैव सेट दी स्मॉल लूम्स, हम उसको टॉय लूम्स या एक्सपीरियंशियल लूम्स हम बोलते हैं, बहुत छोटे से लूम्स है
1: जी।
0: तो हम वहां बहुत इंटरेस्ट भी है, छोटे बच्चे महिलाएं सब जाके ट्राई आउट कर रहे हैं। देखो वो इतना आसान भी नहीं है, द एक्चुअल जो हथकरघा है इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स, बट ये सिंपल थिंग ऑफ यू नो जॉइनिंग अ वार्प एंड वेफ्ट जिससे कपड़ा निकलता है, वो एक्चुअली हम भी कर सकते हैं। तो उसके लिए ऐसे एक्सपीरियंशियल चीजें हम अपने जो एग्जीबिशंस या एक्सपोस होते हैं हम उसमें वो शामिल कर रहे हैं
1: जी, उसमें शामिल किया जा रहा है। आमतौर पर ये होता है हैंडलूम पहनना सभी चाहते हैं और हैंडलूम की जो साड़ियां होती हैं बहुत ही गरिमापूर्ण, बहुत ही सुंदर होती हैं, लेकिन क्योंकि वो हाथ से तैयार की गई हैं और बहुत लंबा समय लगा है बुनकर को उसे तैयार करने में, तो इसलिए वो अक्सर महंगी भी होती हैं। अभी तक हमने जो बात की वो इस तरह की योजनाओं की है जिनका लाभ बुनकर उठा सकते हैं। क्या जो खरीदार हैं उनको भी हैंडलूम खरीदने पर कुछ विशेष प्रोत्साहन मिल सकता है?
0: एक्चुअली मिनिस्ट्री का ये थॉट है कि कस्टमर को, हालांकि कुछ राज्य सरकार सब्सिडी दे रहे हैं
1: जी,
0: बट हमारा ये यू नो व्हाट वी आर रिक्वेस्टिंग द कंज्यूमर्स इज टू अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट। देखो जब हम एक बार देखें कि ये कैसे बनता है
1: जी,
0: एक बार एक बुनकर के घर में जाएंगे, आप थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे, इस यू नो इंक्रीज प्राइस देने में कोई हिचक नहीं होगी। तो द स्टोरी ऑफ द वीवर, जब आप ये

0: समझ सके एक प्रोडक्ट पे अगर इसमें QR कोड स्कैन करने पे आपको मालूम पड़ रहा है कि ये कहाँ से आ रहा है, कौन से गांव से आ रहा है, वहां से एक बुनकर की कारीगरी है। देखो हम सोचते हैं कि वीविंग इज इजी, इट इज नॉट इजी
1: जी,
0: इट इज एडवांस्ड मैथमेटिक्स। मैंने ये जो वॉर्प एंड वेफ्ट का जो हिस्सा है एंड उसमें देखो वॉर्प एंड वेफ्ट तो हम कर सकते हैं लेकिन उसमें डिजाइन बनाने के लिए द काइंड ऑफ मेंटल मैथमेटिक्स दैट हैज टू बी डन इज रियली कॉम्प्लेक्स। तो माय पॉइंट हियर वुड बी कि हमें खरीदना चाहिए एंड जो एक्चुअली वीवर को सीट एज अ प्रीमियम आर्टिकल सो दैट वी रीच द प्रीमियम मार्केट एंड ताकि वीवर को अच्छा वेजेस भी मिले। एट द एंड ऑफ द डे वीवर को अच्छा वेजेस मिलना चाहिए। नाउ एज फार एज अ कस्टमर इज कंसर्न अगर आप वीवर से डायरेक्टली खरीदेंगे तो यू विल गेट इट एट अ रीजनेबल प्राइस। अगर बीच में मिडल मैन आ जाए, बीच में एक मार्केटिंग एजेंसी आ जाए तो प्राइसेस ज्यादा सा इंक्रीज होगा। तो मेरा ये रिक्वेस्ट होगा कि हम जो मेलाएं लगाते हैं जब भी एक अपॉर्चुनिटी आ जाए, जब आप वीवर से डायरेक्टली खरीद सके तो आप उसका लाभ उठाए। दूसरा, मंत्रालय ने एक वेबसाइट बनाया है indiahandmade.com। इंडिया हैंडमेड एक ऐसा पोर्टल है जहां वीवर खुद अपना डालता है, वीवर पुट्स हिज प्रोडक्ट्स ऑनलाइन, तो वहां पर भी आपको बहुत रीजनेबल रेट्स मिल जाएंगे
1: जी।
0: तो इन सुविधाओं का आप इस्तेमाल करें
1: जी। एक अनुभव मेरा इस बारे में बहुत अच्छा रहा कि जब हम कहीं घूमने जाते हैं बहुत सारे ट्रैवल एजेंसीज में अच्छी भूमिका निभा सकते हैं कि वो जो स्पॉट रखते हैं घुमाने के लिए, साइट सीइंग के लिए ले जाते हैं, उसमें उस जगह के बुनकरों को भी शामिल किया जाए। तो हमने एक इस तरह का दौरा किया और उसमें हमने ये जाना, जैसे अभी आपने कहा कि कितना कॉम्प्लेक्स डिजाइन होता है, उसमें बुनकर ने हमें बताया कि जो हमारा राज्य का पेड़ है हम उसकी पत्तियां इसमें लगाते हैं, जो हमारा राज्य का पक्षी है हम उसकी छवि इसमें देते हैं और इस तरह से हम अपने राज्य की सेवा कर रहे हैं अपना काम करते करते। तो ट्रैवल एजेंसीज भी इसमें बड़ी भूमिका निभा सकती हैं, आप क्या सोचती हैं इस बारे में?
0: बहुत अच्छा सोच है बिकॉज देखो टूरिज्म एंड हैंडलूम
1: जी
0: का बहुत अच्छा मेल हो सकता है। तो हमारा एक कार्यक्रम भी है, यह है क्राफ्ट टूरिज्म विलेज
1: जी।
0: तो क्राफ्ट टूरिज्म विलेज में हम ये करते हैं कि जहाँ टूरिस्ट फुटफॉल है, अगर अगल बगल में कोई हैंडलूम का क्लस्टर है, हम उसको लिंक करते हैं, लिंक करते हैं एंड वहां ताकि टूरिस्ट वहां जा सके, वीवर के घर जा सके, वीविंग का कोई एक्सपीरियंस ले सके एंड एक कॉमन फैसिलिटेशन सेंटर हो, उनका मार्केटिंग भी हो
1: जी।
0: तो अभी देश में हमारे 6 क्राफ्ट हैंडलूम विलेजेस ऑलरेडी चालू है और 3 में अभी काम चल रहा है। तो दिस इज एक्चुअली अ वेरी गुड इनिशिएटिव क्योंकि टूरिज्म का इंटेग्रल पार्ट है ट्रेडिशन एंड हेरिटेज। आपने सही पहचाना कि देखो जो धागा यूज किया जाता है, जो मोटिफ करते हैं, जो रंगाई करते हैं, जो मैंने एवरीथिंग इज लिंक्ड टू द कल्चर ऑफ दैट एरिया। तो इट इज सो इम्पॉर्टेंट कि हम उसको छोड़ ना दें, हम उसको मेंटेन करें, उसको चेरिश करें, उसको आगे लेके जाए
1: जी। तो इसी मोड पर मैम आपकी पसंद का एक और गाना,
0: अभी एक रिसेंटली एक मूवी आया था कारवा
1: जी,
0: तो जहाँ हमारा एक यंग स्टार है दुलकर, तो जो कि ममूटी जी बहुत रिनाउंड मलयालम एक्टर है, उनका बेटा है दुलकर एंड देयर इज अ वेरी नाइस सॉन्ग इन दैट, एक छोटा सा फसाना
1: जी
0: वो प्ले करें
1: जी। बिल्कुल यही गीत सुनवाते हैं।

0: एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस गाने के बाद पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में। आज कार्यक्रम में हम अपने बुनकरों की दिनचर्या को जान रहे हैं, उनके जीवन की उपलब्धियां भी समझ रहे हैं और उनके संघर्ष भी, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं स्वदेशी आंदोलन से वैश्विक पहचान बनाने वाले हमारे देसी धागों की राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के संदर्भ में। और कार्यक्रम में आज हमारी मेहमान हैं आईएएस ऑफिसर डॉक्टर एम बीना, आप डेवलपमेंट कमिश्नर हैं हैंडलूम से। मैम, अभी हमने बात की कि किस तरह से हम युवाओं को जोड़ सकते हैं हैंडलूम से और किस तरह से जो बुनकर हैं वो भी जो सरकारी योजनाएं हैं उनका लाभ उठा सकते हैं। यहां मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि अभी टेक्नोलॉजी से हम बहुत सारी चीजें आसानी से पा रहे हैं, तो कैसे उसका इस्तेमाल कर सकते हैं हैंडलूम को बढ़ावा देने के लिए?
1: एक्चुअली हैंडलूम जो है वो ट्रेडिशनल है, बट ये नहीं है कि उसमें टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन नहीं है। एक्चुअली हैंडलूम को स्ट्रेंथन करने के लिए वी शुड बी यूजिंग टेक्नोलॉजी, तो उसमें एक दो प्रयास हमारे मिनिस्ट्री की ओर से चल रहा है। तो एक तो है कि हैंडलूम टेक्नोलॉजी को आगे लेके जाने के लिए एक संस्था का अभी हाल ही में उसका इनॉग्रेशन हो रहा है
0: जी।
1: वो है सेंटर ऑफ एक्सेलेंस इन हैंडलूम टेक्नोलॉजी, जो हम IIT दिल्ली के साथ हम कर रहे हैं, ताकि वो नई टेक्नोलॉजी में, बेटर लूम्स में, बेटर एर्गोनॉमिक्स में, नए डिजाइन में, नए डाइस में, इन सब में रिसर्च करे और उस रिसर्च का जो नतीजा है हमारे व्यूअर्स को दे। दूसरा, हम फ्रॉम द यूथ एंड द स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया हम एक लूम हैकाथॉन हमने अनाउंस किया था
0: जी।
1: काफी उसमें रिस्पॉन्स भी आया है एंड दैट इज ऑल्सो वन वे जहां हम अच्छे आइडिया समेट सके ताकि हम हैंडलूम सेक्टर में यूज करें
0: जी।
1: तीसरा है, हमने अभी एक पायलट बेसिस पे स्टार्ट किया है। देखो, ये ट्रेसेबिलिटी समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट इन हैंडलूम सेक्टर, कि एक्चुअली वो हैंडलूम पे बना है, कहाँ बना है, कैसे बना है। तो इसके लिए एक IoT डिवाइस है जो लूम पे लगाया जाता है एंड ये जो डिवाइस है वो एक तो वो GI टैग्ड है, तो ये कहाँ पे बुन रहा है वो ऑटोमेटिकली वो डेटा आ जाता है। दूसरा, जो लूम का जो मूवमेंट है वो उसको कैप्चर करता है। देखो, अगर पावरलूम में है तो मूवमेंट इज एंटायरली यूनिफॉर्म, अगर हाथ से बन रहा है तो एक मूवमेंट में ज्यादा फोर्स होगा, एक में कम होगा। तो इन अ वे इट इज ऑथेंटिकेशन, इन अ वे इट इज जियो टैगिंग एंड कितना धागा बन रहा है एक दिन, वो पूरा डेटा उसमें कलेक्ट किया जा रहा है। तो ये भी हम एक बड़े स्तर पर पायलट हमारा बहुत सक्सेसफुल रहा एंड अब नए फेज में हम 10,000 ऐसे सच डिवाइसेस हम लेके आ रहे हैं
0: जी। हथकरघा घाट भी उपलब्ध करवाए जा रहे हैं जी।
1: हैंडलूम हार्ट इज आवर ड्रीम प्रोजेक्ट, जहां हम एक अच्छा सा एक मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स जैसे इन दिल्ली वी आर वर्किंग फॉर दैट, ताकि एक अच्छा सा रिटेल स्पेस मिले जो हमारे हैंडलूम के बुनकर को, प्लस जो स्टार्टअप्स यहाँ काम कर रहे हैं, जो निफ्ट के यंग डिजाइनर्स पास आउट हो रहे हैं।

0: सबको मिला के हम एक हैंडलूम हाट का भी आयोजन कर रहे हैं।
1: जी, क्या बुनकरों से संवाद का कोई सीधा तरीका है जहां वो अपनी समस्याएं भी रख सके, कोई ऐसा मंच उपलब्ध करवाया गया है?
0: देयर इज समथिंग कॉल्ड द चौपाल।
1: जी,
0: तो हमारे सारे वीवर्स सर्विस सेंटर्स फील्ड पे जाते हैं एंड क्लस्टर लेवल पे चौपाल कराते हैं। तो एक और तो हम उनको ट्रेनिंग देते हैं, एंड जैसे कि आपने सुना कि बहुत सारे स्कीम्स हैं, लेकिन हर बुनकर को ये जानकारी नहीं है। तो हमारे जो कर्मचारी हैं वो गांव में जाते हैं, चौपाल कराते हैं, स्कीम के बारे में बताते हैं, एंड कहीं कहीं तो वहीं से एप्लीकेशन भी ले लेते हैं। तो ये है एक एवेन्यू। दूसरा, हम जो भी हमारे बड़े ट्रेनिंग्स होते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग है समर्थ ट्रेनिंग। तो समर्थ ट्रेनिंग के तहत वीवर को एक अच्छा एक है कि उसको वेज कॉम्पेंसेशन मिलता है। कभी कभी ये लोग ट्रेनिंग पे नहीं आते क्योंकि एक दिन का उनका वेजेस चला जाता है। तो अंडर द स्कीम वी प्रोवाइड फॉर वेज कॉम्पेंसेशन। तो समर्थ हमारा एक बहुत सक्सेसफुल स्कीम है हैंडलूम सेक्टर में। तो वहां भी दे हैव एन अपॉर्चुनिटी टू डिस्कस विद दीज मैटर्स। एंड हैंडलूम दिवस जैसे जो बड़े सेलिब्रेशंस होते हैं, तो वो तो हर क्लस्टर में, हर WOC लेवल पर, राज्य स्तर पर, नेशनल स्तर पर, ये सब दीज आर प्लेसेस वेयर वी कम टूगेदर। अभी हाल ही में बजट में एक नया स्कीम अनाउंस हुआ है, नेशनल हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट प्रोग्राम। तो उसको बनाने के लिए काफी चर्चाएं हुई एट द फील्ड लेवल, एट द स्टेट लेवल, जो इसमें विशेषज्ञ हैं उनसे भी काफी बातचीत हुई है। तो ये हमेशा एक ऐसे वार्तालाप का हम स्वागत करते हैं ताकि वीवर्स भी अपना मन रख सके हमारे पास।
1: जी, अभी तक हम बात कर रहे थे हथकरघा से जुड़े हुई जो आर्थिक पक्ष है उसकी भी, साथ ही सरकार ने जो योजनाएं उपलब्ध करवाई हैं उनकी, और सामाजिक पक्ष भी। अब बात करते हैं हथकरघा से जुड़े हुए स्वास्थ्य पक्ष की। हम कहते हैं कि हैंडलूम जो है, ये जो धागे है, ये स्किन फ्रेंडली है और स्किन डिजीज से हम बच सकते हैं अगर हम सही तरीके के कपड़े पहने, वो फैब्रिक जो है वो ठीक हो, इस बारे में मैम क्या कहेंगी?
0: हैंडलूम जो बनता है वो ज्यादातर नेचुरल फाइबर्स पे बनता है, एंड क्योंकि ये नेचुरल फाइबर्स पे बनता है एंड मोस्ट ऑफ देम यूज नेचुरल डाइस ऑल्सो। आजकल बहुत नेचुरल डाइस का भी यूज हो रहा है।
1: जी,
0: तो हमारा एक स्टार्टअप है जो साउथ में है, तो उन्होंने एक योगा मैट बनाया है हैंडलूम पे। तो नॉर्मली हम योगा मैट जो चाइनीज इंपोर्टेड है वो यूज करते हैं, मैंने योगा करते हैं एंड उसी के फ्यूम्स हम इनहेल करते हैं, लेकिन ये कंपनी जो है वो हैंडलूम योगा मैट बनाते हैं ताकि जब हम योगा करें और पसीना निकले, जो हम फ्यूम्स इनहेल करें वो बहुत हर्ब्स जैसे है उसमें मिलाया जाता है। अगर हैंडलूम का भी बेडशीट यूज करें, हैंडलूम के कपड़े यूज करें, वो डेफिनेटली वो स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। ये नेचुरल कलरिंग भी आ गया है ताकि वो और बेटर बन जाए।
1: जी, हम बात कर रहे थे कि युवा किस तरह से और ज्यादा यूज कर सकते हैं हैंडलूम प्रोडक्ट्स का। ऐसे में सोवनियर इंडस्ट्री एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, अगर उस इंडस्ट्री से हमें लोग इस समय सुन रहे हैं तो उनके लिए क्या आपका मैसेज है?
0: तो हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट के बहुत अच्छे सोवनियर बन सकते हैं एंड उसको हमें ज्यादा यूज करना है। एंड यूथ के लिए, एक्चुअली मैं अपने बुनकर भाइयों को भी बोलती हूँ कि अब यूथ के लिए जो कपड़े बनने हैं, तो हाल ही में हमने एक डिजाइनर कॉन्क्लेव के लिए कॉन्टेस्ट जैसे रखा। देश में जो 72 क्लस्टर्स से, जहाँ हम क्लस्टर डिजाइनर्स थे, हमने एप्लीकेशन मंगवाए एंड इतने अच्छे नए तरीके के ड्रेसेस आए हैं। मैंने जो हैंडलूम में पहले तो हम ओनली साड़ीज देखते थे, लेकिन अब इतना इनोवेशन अब चल रहा है ताकि युवा भी इसमें जरूर आकर्षित होंगे।
1: जी, और हम तो अपने सभी श्रोताओं से ये कहेंगे ही कि जैसा कि मैम ने भी कहा कि जब भी कभी कोई उपहार दे, कोई भेंट दे किसी को, उसमें हैंडलूम आइटम जरूर रखें। जब कभी दोस्ती यारी निभानी हो तब भी आप कोई अच्छा सा गिफ्ट लें तो उसमें भी ये याद रखें कि हमारी जेब से जो पैसा निकलता है वो देश में घूमे और सही हाथों में पहुंचे। तो हमारा छोटा सा उपहार भी बुनकर जो भाई बहन हैं उनकी जो अर्थव्यवस्था है उसमें एक बड़ा हिस्सा होता है, तो उनका भी ध्यान रखा जाए। चलते चलते मैम, क्या संदेश आपका हमारे सभी श्रोताओं के लिए?
0: तो मेरा ये रिक्वेस्ट है कि कम से कम 7 अगस्त को तो आपको पहनना ही है हैंडलूम, तो आपको हर भारतीय को 7 अगस्त को हैंडलूम पहनना है।
1: जी,
0: और उससे ऊपर हम हैंडलूम को जीवन का हिस्सा बनाएं। ये बुनकर की जो कला है, उनकी जो सर्गात्मकता है, उसको आप प्रोत्साहन दें, उनका हौसला बढ़ाएं, एंड सबसे ऊपर हमारी विरासत को हम अपनाएं, उस पर फकर करें, उसको पूरी तरह से अपनाएं।
1: जी,
0: तो हैंडलूम को पूरी तरह से सपोर्ट चाहिए, उनको प्यार चाहिए और जीवन में उसका हिस्सा बना दीजिए।
1: जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस संदेश के लिए। और

0: कहेंगे कि ये वो संस्कृति और ये वो विरासत है जो पहनी जा सकती है, जिसे हम हर जगह अपने साथ ले जा सकते हैं, अपने देश के कोने कोने में भी और साथ ही भारत से बाहर भी। आप सुन रहे थे पोस्ट बॉक्स नंबर 111। आज इस कार्यक्रम में हमारी विशेषज्ञ थी, हमारी अतिथि थी डॉक्टर एम बीना, आईएएस ऑफिसर आप और डेवलपमेंट कमिश्नर हैं हैंडलूम से। मैम ने हमसे बात की और बहुत सारे नए विचार भी हमें पता चले और साथ ही ऐसी योजनाओं के बारे में भी हमने जाना, हमारे श्रोताओं ने जाना, जो खास तौर से बुनकर जो है उनके लिए है, उनके कल्याण के लिए है। मैम आप हमारे स्टूडियो आई, आपने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: बहुत

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में अपने आवास पर राष्ट्रमंडल खेल 2026 के पदक विजेताओं से मुलाकात की। पदक विजेताओं ने प्रधानमंत्री के साथ बातचीत के दौरान खेलों से जुड़े अपने अनुभव साझा किए। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी खिलाड़ियों ने अपने शानदार प्रदर्शन से देश का मान बढ़ाया है और उनकी सफलता कई युवाओं को प्रेरित करेगी।
1: जो खेलेगा वो खिलेगा। ऑलवेज चीयर फॉर भारत। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय।
0: इस अवसर पर युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मांडविया और युवा मामले और खेल राज्य मंत्री रक्षा निखिल खड़से मौजूद थे। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में 23 जुलाई से 2 अगस्त तक आयोजित हुए इन खेलों में भारत पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। भारतीय खिलाड़ियों ने विभिन्न खेलों में कुल 39 पदक जीते, जिनमें 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। हर घर तिरंगा अभियान कल से शुरू हो गया है। 17 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य देशवासियों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना है।

इस वर्ष ये अभियान राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ मनाया जा रहा है। देशभर में वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी होगा। दुनिया भर में 200 से अधिक भारतीय दूतावास, उच्चायोग और वाणिज्य दूतावास भी अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से इस अभियान में उत्साह के साथ शामिल होने और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने का संकल्प फिर से लेने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि तिरंगा देश का गौरव है। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि इस वर्ष का अभियान वंदे मातरम को समर्पित है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम DMRC ने आजादी की भावना का जश्न मनाने के लिए येलो लाइन पर हर घर तिरंगा थीम वाली एक खास मेट्रो ट्रेन शुरू की है। DMRC ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में बताया कि भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस के जश्न के तहत आयोजित हफ्ते भर चलने वाले कार्यक्रमों के हिस्से के तौर पर कल से इस ट्रेन की शुरुआत की गई है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने नागरिकों से गर्व के साथ राष्ट्रीय ध्वज फहराने और डिजिटल कार्यक्रमों में हिस्सा लेने का आग्रह किया। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने कहा है कि पीएम आवास योजना शहरी और दूसरे चरण की पीएम आवास योजना शहरी के अंतर्गत अब तक 1,25,00,000 से अधिक मकानों को मंजूरी दी जा चुकी है। इनमें से 1,00,00,000 से ज्यादा मकान बनकर तैयार हो चुके हैं और लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं। इनमें से करीब 1,00,00,000 मकान महिलाओं को आवंटित किए गए हैं। झारखंड सरकार और प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच झारखंड लोक सेवा आयोग JPSSC और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों की अधिकतर मांगों पर सहमति बन गई है। राज्य के मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा कि सरकार 14वीं JPSC प्रारंभिक परीक्षा और वर्ष 2023 से 2025 की बैकलॉग परीक्षाओं को रद्द करने पर सहमत है। कल सरकार और छात्रों के बीच हुई वार्ता के बाद मंत्री ने कहा कि कथित वित्तीय अनियमितताओं की ईडी जांच करेगी और आपराधिक मामलों की CID जांच कराई जाएगी। साथ ही 90 दिनों के भीतर आरोप पत्र दाखिल करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट

0: गठित करने की बात भी कही गई है। पाकिस्तान में दक्षिणी वजीरिस्तान के जारमिलान इलाके में हथियारबंद हमलावरों ने दो बुजुर्ग आदिवासी नेताओं की गोली मारकर हत्या कर दी। पीड़ित गाड़ी से जा रहे थे, तभी डोरजांडा में अज्ञात बंदूकधारियों ने उन पर गोलियां चला दी। दोनों आदिवासी नेताओं को कई गोलियां लगी और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक हाजी गुल और मलिक बादशाह सुलेमान खेल कबीले से थे। गोलीबारी के तुरंत बाद हमलावर मौके से भागने में सफल रहे। उज्बेकिस्तान में एशियाई जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महाराजन अरुमुग पंडियन ने 65 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीत लिया है। महाराजन ने कुल 285 किलो का भार उठाकर अपना व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आज और कल दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, असम, मेघालय, पूर्वी मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी तेज बारिश हो सकती है। ओडिशा में लगातार बारिश जारी है। IMD ने पूरे राज्य के लिए येलो वार्निंग जारी की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Ashish P. Abraham. The Har Ghar Tiranga campaign is being celebrated across the country to promote patriotism, national unity, and India's rich cultural heritage.

आकाशवाणी के 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का एफएम गोल्ड चैनल। संग हूं मैं श्रेयसी और कार्यक्रम गीत सुहाने लेकर आपके संग हाजिर हूं। तो आइए इस कार्यक्रम की शुरुआत करें और सबसे पहले ये गाना सुनते हैं।

बिल्कुल दोस्तों, जब इस जगह पर आती हूँ और यूं बैठ करके जब गानों को, एक से एक बेहतरीन गानों को आपके साथ साथ मैं भी गुनगुनाती हूँ, तो बस यही गाना मेरे जहन में भी गूंजता रहता है। ये गाना हमने लिया फिल्म दिल तेरा दीवाना से। आवाजें थी लता मंगेशकर और रफी साहब की, बोल सजाए शैलेंद्र ने और संगीत शंकर जयकिशन का। बढ़ते हैं अपने इस अगले गीत की तरफ। फिल्म प्रोफेसर से लिया है ये नगमा हमने, आवाज है रफी साहब की।

कभी कभी कई बार कुछ ऐसा ही एहसास मन में घूमता रहता है। कभी लोग पास होकर भी अजनबी से लगते हैं और कभी अजनबी भी अपने से करीब लगते हैं। जिंदगी की यही सबसे बड़ी सच्चाई है, रिश्ते खून से नहीं, एहसास से जुड़ते हैं।

लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज में फर्ज फिल्म का ये नगमा अभी आपने सुना दोस्तों। वैसे ये तो कहना बहुत सही है कि हाले दिल बयां करना जरूरी होता है, अपना इजहार करना जरूरी है, लेकिन साथ ही इस बात का भी ख्याल करना जरूरी है कि दिल हम उसे ही दें जो बदले में जान दे दे। मेरे ख्याल से अब आप इस गाने के का इशारा समझ ही गए होंगे। जी हाँ, अंदाज फिल्म का ये अगला नगमा आपके साथ साझा कर रही हूँ। फिल्म अंदाज है और आवाज़ें हैं रफ़ी साहब आशा भोसले की, बोल सजाए हज़रत जयपुरी ने और संगीत दिया शंकर जयकिशन ने।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

आकाशवाणी के 100.1 मेगाहर्ट्ज पर दोस्तों आप सुन रहे हैं गीत सुहाने कार्यक्रम और संग हूं मैं श्रेयसी। जी हां, जो नगमा भी आपने सुना दोस्तों धरती कहे पुकार की फिल्म से हमने लिया आवाज लता मंगेशकर और मुकेश की, मजरूह सुल्तानपुरी के सजाए बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। बढ़ते हैं अब अपने इस अगले नगमे की तरफ, फिल्म कुदरत का ये गीत लता मंगेशकर की आवाज में आपके लिए।

गीत और बातें तो अपनी ओर चलती ही रहेंगे, लेकिन कुछ ऐसी भी बातें होती हैं जो दिल को छू जाती हैं। जैसे कि एक शेर बस यूं ही मेरे सामने से गुजरा और बहुत ही गहराई तक छू गया। तेरी अहमियत बयां कर पाऊं इतनी मेरे शब्दों में बात नहीं, तेरी अहमियत बयां कर पाऊं इतनी मेरे शब्दों में बात नहीं, और तू रूह तक बसा है मेरे, तुझे मुझसे अलग कर पाना इतना आसान नहीं।

ये जो बॉलीवुड के गीत हैं ना, हमारे दिल में हमेशा गूंजते ही रहते हैं और किसी न किसी मजेदार बात की याद दिलाते रहते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि जब हमें किसी के खास के साथ होने का एहसास होता है, तो ये सारे गाने हमारे उस जज्बात को शब्द दे जाते हैं। ये नगमा दोस्तों आपने सुना फिल्म हिमालय की गोद से। आवाज मुकेश की थी, बोल सजाए आनंद बख्शी साहब ने, और संगीत कल्याण जी आनंद जी का। बढ़ते हैं अगले गीत की तरफ। फिल्म द ट्रेन का ये नगमा लिया हमने, लता मंगेशकर की आवाज है, आनंद बख्शी साहब के बोल हैं, और आर डी बर्मन साहब का संगीत।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो

ये बेहतरीन सा नगमा दोस्तों हमने फिल्म लव इन टोक्यो से लिया, लता मंगेशकर की प्यारी सी आवाज और बोल हसरत जयपुरी के। संगीत सजाया शंकर जयकिशन साहब ने। बढ़ते हैं अब अपने इस अगले गीत की तरफ। फिल्म त्रिशूल से ये गाना लिया है हमने, आवाजें हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में अपने आवास पर राष्ट्रमंडल खेल 2026 के पदक विजेताओं से मुलाकात की। पदक विजेताओं ने प्रधानमंत्री के साथ बातचीत के दौरान खेलों से जुड़े अपने अनुभव साझा किए। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी खिलाड़ियों ने अपने शानदार प्रदर्शन से देश का मान बढ़ाया है और उनकी सफलता कई युवाओं को प्रेरित करेगी।
1: जो खेलेगा वो खिलेगा। ऑलवेज चीयर फॉर भारत। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय।
0: स्कॉटलैंड के ग्लासगो में 23 जुलाई से 2 अगस्त तक आयोजित हुए इन खेलों में भारत पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। भारतीय खिलाड़ियों ने विभिन्न खेलों में कुल 39 पदक जीते, जिनमें 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। हर घर तिरंगा अभियान कल से शुरू हो गया है। 17 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य देशवासियों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना है।
2: घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, रथ घर तिरंगा।
0: इस वर्ष ये अभियान राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ मनाया जा रहा है। देश भर में वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी होगा। दुनिया भर में 200 से अधिक भारतीय दूतावास, उच्चायोग और वाणिज्य दूतावास भी अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से इस अभियान में उत्साह के साथ शामिल होने और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने का संकल्प फिर से लेने की अपील की है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम DMRC ने आजादी की भावना का जश्न मनाने के लिए येलो लाइन पर हर घर तिरंगा थीम वाली एक खास मेट्रो ट्रेन शुरू की है। DMRC ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में बताया कि भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस के जश्न के तहत आयोजित हफ्ते भर चलने वाले कार्यक्रमों के हिस्से के तौर पर कल से इस ट्रेन की शुरुआत की गई है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने कहा है कि पीएम आवास योजना शहरी और दूसरे चरण की पीएम आवास योजना शहरी के अंतर्गत अब तक 1,25,00,000 से अधिक मकानों को मंजूरी दी जा चुकी है। इनमें से 1 करोड़ से ज्यादा मकान बनकर तैयार हो चुके हैं और लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं। झारखंड सरकार और प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों की अधिकतर मांगों पर सहमति बन गई है। कल सरकार और छात्रों के बीच हुई वार्ता के बाद मंत्री ने कहा कि कथित वित्तीय अनियमितताओं की ED जांच और आपराधिक मामलों की CID जांच कराई जाएगी। साथ ही 90 दिनों के भीतर आरोप पत्र दाखिल करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने की बात भी कही गई है। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आज और कल दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, असम, मेघालय, पूर्वी मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी तेज बारिश हो सकती है। ओडिशा में लगातार भारी बारिश हो रही है, जिससे कई जिलों में एक बार फिर बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। इस सीजन में वैतरणी नदी में तीसरी बार बाढ़ आई है। IMD ने पूरे राज्य के लिए येलो वार्निंग जारी की है। भारत ने बोलीविया की सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा क्षमता को मजबूत करने के लिए 8 मीट्रिक टन जीवन रक्षक और जरूरी दवाएं भेजी हैं। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि भारत एकजुटता और साझा प्रगति के जरिए सहयोग बढ़ाने के लिए हमेशा तैयार है। संयुक्त राज्य अमेरिका के यूजीन में हुई विश्व एथलेटिक्स U20 चैंपियनशिप 2026 में बसंत कुमार मेघवाल और शाहनवाज खान ने इतिहास रचा है। बसंत कुमार ने पुरुषों की ऊंची कूद में रजत पदक और शाहनवाज खान ने लंबी कूद में कांस्य पदक जीता, जिससे चैंपियनशिप में भारत के पदकों की संख्या 3 हो गई। बसंत विश्व एथलेटिक्स U20 चैंपियनशिप में ऊंची कूद में और शाहनवाज लंबी कूद में पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष बने।

उज्बेकिस्तान में एशियाई जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महाराजन अरुमुग पंडियन ने 65 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीत लिया है। महाराजन ने कुल 285 किलोग्राम भार वर्ग उठाकर अपना व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी के 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का एफएम गोल्ड चैनल। घड़ी में ठीक 2:11 का वक्त हो चला है और ये वक्त है कार्यक्रम रात सुरमई का। तो आइए इस रात को थोड़ा और बेहतरीन बनाएं और इन कुछ चंद बेहतरीन नगमों से सजाएं। शुरुआत करते हैं इस गीत से।

कई बार कुछ ऐसी बातें दिल को यूं छू जाती हैं कि उन चीजों का एहसास भी याद करके लगता है कि कुछ पाया तो है, कुछ बूंद सा, और खोने से भी उसे डर लग रहा है। कुछ है तो मेरे पास एक एहसास सा, लेकिन बयां करने से भी डर लग रहा है।

देते आवाज हम अनसुना कर देते, तुम देते आवाज और हम अनसुना कर देते, तुम्हें लगता है हम ऐसी खता कर देते। बस जान ही तो उन्होंने मांगी थी हमसे, बस जान ही उन्होंने मांगी थी हमसे, चीज उसी की थी, हम कैसे मना कर देते।

में दुखों के ना जिया कीजिए, दर्द और गम तन्हा ना पिया कीजिए। हमने कब आपका साथ छोड़ा है जनाब, तकलीफ अपनी कोई हो तो हमसे बयां कीजिए।

ये तो एकमात्र ऐसा एहसास है जिसे हर रिश्ते से ऊपर रखा गया है, क्योंकि ये वो एहसास है जहाँ पर अगर बच्चे को एक खरोच भी आए तो पहले ही माँ का दिल धड़क उठे, अगर बच्चा नज़रों से ओझल हो जाए तो पहले ही माँ की सांस रुक जाए। और जब एहसासों की बात करते हैं, दिल की बात करते हैं, कोई बात बयां करने की बात करते हैं, तो माँ के पास आकर ही सारी बातें हम बयां कर पाते हैं। बढ़ते हैं अब अपने इस अगले गीत की तरफ।

और दोस्तों, अब जल्द ही घड़ी हमें ये कहना चाह रही है कि रात सुरमई कार्यक्रम को हमें यहाँ देना होगा विराम, लेकिन अभी भी कुछ लम्हे हमारे पास हैं। तो एक और नगमा जो मुझे बेहद पसंद है, उम्मीद है आपको भी पसंद आएगा, वो मैं आपसे साझा करना चाह रही हूँ। तो चलते चलते इस कार्यक्रम का ये आखिरी नगमा आपके लिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में अपने आवास पर राष्ट्रमंडल खेल 2026 के पदक विजेताओं से मुलाकात की। पदक विजेताओं ने प्रधानमंत्री के साथ बातचीत के दौरान खेलों से जुड़े अपने अनुभव साझा किए। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी खिलाड़ियों ने अपने शानदार प्रदर्शन से देश का मान बढ़ाया है और उनकी सफलता कई युवाओं को प्रेरित करेगी।
1: जो खेलेगा वो खिलेगा। ऑलवेज चीयर फॉर भारत। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय।
0: इस अवसर पर युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मांडविया और युवा मामले और खेल राज्य मंत्री रक्षा निखिल खड़से मौजूद थे। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में 23 जुलाई से 2 अगस्त तक आयोजित हुए इन खेलों में भारत पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। भारतीय खिलाड़ियों ने विभिन्न खेलों में कुल 39 पदक जीते, जिनमें 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। हर घर तिरंगा अभियान कल से शुरू हो गया है। 17 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य देशवासियों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना है।
2: घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, रथ घर घर तिरंगा।
0: इस वर्ष ये अभियान राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ मनाया जा रहा है। दुनिया भर में 200 से अधिक भारतीय दूतावास, उच्चायोग और वाणिज्य दूतावास भी अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से इस अभियान में उत्साह के साथ शामिल होने और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने का संकल्प फिर से लेने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि तिरंगा देश का गौरव है। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि इस वर्ष का अभियान वंदे मातरम को समर्पित है। मणिपुर भी देश के बाकी हिस्सों की तरह हर घर तिरंगा अभियान में शामिल हुआ। इम्फाल पश्चिम जिले के सिंगजामेई में अपने घर से इस अभियान में शामिल हुए मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद ने लोगों से अपील की कि वे खुद को पहले भारतीय और फिर मणिपुरी कहें। उन्होंने कहा कि जब तक लोग खुद को अपनी जातीय पहचान से जोड़कर देखेंगे, तब तक राज्य में शांति कायम करना मुश्किल होगा। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने कहा है कि पीएम आवास योजना शहरी और दूसरे चरण की पीएम आवास योजना शहरी के अंतर्गत अब तक 1,25,00,000 से अधिक मकानों को मंजूरी दी जा चुकी है। इनमें से 1 करोड़ से ज्यादा मकान बनकर तैयार हो चुके हैं और लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं, जिनमें करीब 1 करोड़ मकान महिलाओं को आवंटित किए गए हैं। झारखंड सरकार और प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों की अधिकतर मांगों पर सहमति बन गई है। कल सरकार और छात्रों के बीच हुई वार्ता के बाद मंत्री ने कहा कि कथित वित्तीय अनियमितताओं की ईडी जांच और आपराधिक मामलों की सीबीआई जांच कराई जाएगी। साथ ही 90 दिनों के भीतर आरोप पत्र दाखिल करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने की बात भी कही गई है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के सचिव श्री वत्स कृष्णा ने सऊदी अरब के हज और उमराह मंत्रालय में योजना और डिजिटल परिवर्तन के उपमंत्री अब्दुल अजीज अल मथानी से मुलाकात की। उन्होंने भारतीय तीर्थयात्रियों के लिए हज के अनुभव को बेहतर बनाने के मकसद से हज पोर्टल्स के तकनीकी एकीकरण पर चर्चा की। प्रतिनिधिमंडल ने हज और उमराह मामलों के उपमंत्री अब्दुल अजीज बिन अब्दुल रहीम वज्जान से भी मुलाकात की और मदीना में हज यात्रियों के अनुभव को बेहतर बनाने पर सार्थक चर्चा की। इस दौरान आवास, परिवहन, समन्वय और तीर्थयात्रा से जुड़ी अन्य जरूरी व्यवस्थाओं पर खास जोर दिया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका के यूजीन में हुई विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप 2026 में बसंत कुमार मेघवाल और शाहनवाज खान ने इतिहास रचा है। बसंत कुमार ने पुरुषों की ऊंची कूद में रजत पदक और शाहनवाज खान ने लंबी कूद में कांस्य पदक जीता, जिससे चैंपियनशिप में भारत के पदकों की संख्या 3 हो गई। बसंत विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में ऊंची कूद में और शाहनवाज लंबी कूद में पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष बने। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आज और कल दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, असम, मेघालय, पूर्वी मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी तेज बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। समय हुआ है रात्रि के 3:11 और 10 सेकेंड। प्रस्तुत है कार्यक्रम हम राही। युगल गीतों से सजे इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपके मित्र नीता अग्रवाल। मित्रों, हम सब कहीं ना कहीं किसी न किसी सफर में एक दूसरे के हमराही बनते हैं। इस सुरीले सफर के हमराही हैं हम सभी, और जब हमराही अच्छे हो तो सफर और जीवन कुछ भी हो, कुछ घंटे मिनट का हो या लम्हों का, कब गुजर जाता है पता ही नहीं चलता।

लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की स्वरूसी सजा ये गीत आपने सुना अभी मस्ताना फिल्म से जो रिलीज हुई थी वर्ष 1970 में। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था, आनंद बख्शी की लिखी रचना। साथियों रात का समय कई बार नींद ना आने का समय भी ऐसा बन जाता है। कहने को तो सोने के लिए होती है रात, लेकिन कई बार नींद नहीं भी आती। कारण कुछ भी हो, उन्हीं में से एक कारण शायद ये भी हो सकता है।

लता मंगेशकर हेमंत कुमार के स्वरों से सजा ये गीत अभी आपने सुना। फिल्म का नाम पोस्ट बॉक्स 999 जो रिलीज हुई थी वर्ष 1958 में। कल्याण जी वीरजी शाह का संगीत था, प्यारेलाल संतोषी की लिखी रचना थी। साथियों हमराही में हमारे दिल के या कहीं जीवन भर के हमराही का विशेष महत्व होता है हमारे जीवन में। यदि वो आंखों से दूर हो तो दिल के और भी पास हो जाता है, जिसकी अनुपस्थिति हमें बेचैन कर देती है।

लता मंगेशकर हेमंत कुमार की आवाज उसी सजा ये गीत शंकर जयकिशन का संगीत था, हसरत जयपुर की लिखी रचना थी और फिल्म का नाम पतिता जो रिलीज

कल्याण जी आनंद जी के संगीत से सजी ये रचना भी आपने सुनी, गुलशन बाबरा की लिखी ये रचना थी। फिल्म का नाम परिवार, जो 1968 में रिलीज हुई थी। महेंद्र कपूर और आशा भोसले की आवाजों से सजा ये गीत था। साथियों, रात के खामोश सफर में चांद का साथ रहना और उस पर भीगी रात का चांद और भी सुंदर हो उठता है। काली घटा से आंख मिचौनी सी खेलता ये चांद हम सबको भाता है।

शंकर जयकिशन का संगीत लिए ये रचना अभी आपने सुनी। शैलेंद्र ने ये गीत लिखा था। मन्ना जी लता मंगेशकर के स्वर थे। फिल्म का नाम चोरी चोरी, जो रिलीज हुई थी वर्ष 1956 में।

मन्ना डे और लता मंगेशकर के संयुक्त स्वरों से सजी ये रचना हमदर्द फिल्म से अभी आपने सुनी। और जब मन की मुराद पूरी हो जाती है तो दिल मतवाला तो हो ही उठता है।

मोहम्मद रफी लता मंगेशकर के स्वरों से सजाइए गीत छोटे नवाब फिल्म से अभी आपने सुना। 1961 रिलीज फिल्म आर डी बर्मन का संगीत था, शैलेंद्र की लिखी रचना।

आरडी बर्मन का संगीतबद्ध किया ये गीत अभी आपने सुना, आनंद बख्शी की लिखी रचना, लता मंगेशकर, किशोर कुमार की आवाजों का सुंदर जादू, फिल्म का नाम अपना देश, जो रिलीज हुई थी वर्ष 1972 में।

और अब दिन सावन के बिल्कुल चल रहे हैं, बहार के दिन हैं। जी हाँ, सावन और बहार मिक्स मौसम चल रहा है। आइए मौसम का आनंद लें इस गीत को सुनते सुनते।

0: अभी आपने ये गीत सुना 1956 रिलीज ये फिल्म लता मंगेशकर हेमंत कुमार की आवाजों का सुंदर जादू था। हेमंत कुमार का संगीत और मजरूह सुल्तानपुरी की लिखी रचना। मित्रों, रिश्ता कोई भी हो उसमें पारदर्शिता, ईमानदारी, सहजता, धीरज और आपसी समझदारी, सामंजस्य का होना अति आवश्यक है और तारीफ का अंदाज भी। जी हाँ, तभी कोई रिश्ता जीवन अंत तक स्थापित रह पाता है।
1: चारों तरफ दूर दूर तक एक दिन वो सारा प्यार एक जगह सिमट कर इकट्ठा हो गया। मैंने पास जाकर गौर से जो देखा तो वो तुम थी।
2: ये तुम बिल्कुल सच कह रहे हो?
1: सच, सिर्फ सच, सच के सिवा कुछ नहीं।
2: तब ठीक है।

फिलैंथ्रोपी आशा भोसले के स्वरों से सजी ये रचना आप सुन रहे हैं रूठा ना करो। इस फिल्म से 1970 रिलीज ये फिल्म, चितलकर रामचंद्र का संगीत, हसरत जयपुरी की लिखी रचना। और अब आज के हमराही कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति के रूप में सज रही है ये रचना। मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर की आवाजें। फिल्म का नाम आया सावन झूम के। 1969 रिलीज ये रचना। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, आनंद बख्शी ने

नमस्कार, साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में अपने आवास पर राष्ट्रमंडल खेल 2026 के पदक विजेताओं से मुलाकात की। पदक विजेताओं ने प्रधानमंत्री के साथ बातचीत के दौरान खेलों से जुड़े अपने अनुभव साझा किए।

0: सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी खिलाड़ियों ने अपने शानदार प्रदर्शन से देश का मान बढ़ाया है और उनकी सफलता कई युवाओं को प्रेरित करेगी।
1: जो खेलेगा वो खिलेगा। ऑलवेज चीयर फॉर भारत। भारत माता की
2: जय।
1: भारत माता की
2: जय।
1: भारत माता की
2: जय।
0: इस अवसर पर युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मांडविया और युवा मामले और खेल राज्य मंत्री रक्षा निखिल खड़से मौजूद थे। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में 23 जुलाई से 2 अगस्त तक आयोजित हुए इन खेलों में भारत पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। भारतीय खिलाड़ियों ने विभिन्न खेलों में कुल 39 पदक जीते, जिनमें 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। हर घर तिरंगा अभियान कल से शुरू हो गया है। 17 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य देशवासियों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना है।
3: घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, रथ घर तिरंगा।
0: इस वर्ष ये अभियान राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ मनाया जा रहा है। देशभर में वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी होगा। दुनिया भर में 200 से अधिक भारतीय दूतावास, उच्चायोग और वाणिज्य दूतावास भी अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से इस अभियान में उत्साह के साथ शामिल होने और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने का संकल्प फिर से लेने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि तिरंगा देश का गौरव है। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि इस वर्ष का अभियान वंदे मातरम को समर्पित है। मणिपुर भी देश के बाकी हिस्सों की तरह हर घर तिरंगा अभियान में शामिल हुआ। इम्फाल पश्चिम जिले के सिंगजा मेई में अपने घर से इस अभियान में शामिल हुए मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद ने लोगों से अपील की कि वे खुद को पहले भारतीय और फिर मणिपुरी माने। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने कहा है कि पीएम आवास योजना शहरी और दूसरे चरण की पीएम आवास योजना शहरी के अंतर्गत अब तक 1,25,00,000 से अधिक मकानों को मंजूरी दी जा चुकी है। इनमें से 1,00,00,000 से ज्यादा मकान बनकर तैयार हो चुके हैं और लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं। झारखंड सरकार और प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों की अधिकतर मांगों पर सहमति बन गई है। कल सरकार और छात्रों के बीच हुई वार्ता के बाद मंत्री ने कहा कि कथित वित्तीय अनियमितताओं की ईडी जांच और आपराधिक मामलों की सीआईडी जांच कराई जाएगी। साथ ही 90 दिनों के भीतर आरोप पत्र दाखिल करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने की बात भी कही गई है। भारतीय नौसेना और अमेरिकी नौसेना का विस्फोटक आयुध निरोधक ईओडी अभ्यास आज से 14 अगस्त तक दक्षिणी नौसेना कमान कोची में आयोजित किया जाएगा। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इस द्विपक्षीय अभ्यास का उद्देश्य दोनों नौसेनाओं की विशेषज्ञ गोताखोरी और ईओडी टीमों के बीच अंतर संचालन को बढ़ाना और पेशेवर सहयोग को मजबूत करना है। हरमुज जलडमरू मध्य को लेकर जारी तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान के प्रति संयम बरत रहा है और फिलहाल कोई नया सैन्य हमला करने की योजना नहीं बना रहा। ट्रंप ने कहा कि ईरान की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है और दावा किया कि उसके पास अपने सैनिकों को वेतन देने के लिए भी पर्याप्त धन नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी ने ईरानी सरकार की आर्थिक चुनौतियों को और बढ़ा दिया है। उनकी ये टिप्पणी ईरान, ओमान और अमेरिका के बीच हुरमुज जल डमरू मध्य को फिर से खोलने के लिए चल रही बातचीत के रुकने के बीच आई है। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आज और कल दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, असम, मेघालय, पूर्वी मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी तेज बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: This is Akashvani, the news read by Ashish P. Abraham. The Har Ghar Tiranga campaign is being celebrated across the country to promote patriotism, national unity, and India's rich cultural heritage.

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम अरुणिमा। कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुप्रभात, मैं हूं आपकी मित्र नीता अग्रवाल। सूरज की लालिमा ने अपने आने की दस्तक दे दी है। धरती पर सूर्य की सुंदर लालिमा अंधियारे के बाद उजाले का सफर, जीवन को संदेश देती हुई लाली, जीवन को गीत सुनाती इसकी रोशनी।

आरडी बर्मन का संगीतबद्ध किया ये गीत अभी आपने सुना। गुलशन बावरा की लिखी रचना थी। आवाजों का जादू भूपेंद्र सिंह, किशोर कुमार, सपन चक्रवर्ती और आरडी बर्मन का। फिल्म का नाम सत्ते पे सत्ता, जो रिलीज हुई थी वर्ष 1982 में।

0: मोहम्मद रफी लता मंगेशकर के संयुक्त स्वरों का जादू इस गीत में अभी आपने सुना। 1970 में ये फिल्म रिलीज हुई थी मित्रों। शंकर जयकिशन का संगीत था, राजेंद्र कृष्ण की लिखी रचना, फिल्म का नाम धरती। साथियों अरुणिमा में सजते हैं जीवन के सातों रंग। इन सभी रंगों से सजकर जब अरुणिमा अपना रंग बिखेरती है तो ऐसा लगता है मानो सात रंग के सुंदर सपने, ऐसे सपने जो हम सच कर सकें, ऐसे अनमोल सपने सच गए हों।
1: मैंने

0: आनंद फिल्म से ये रचना भी आपने सुनी। 1971 रिलीज फिल्म। मुकेश की आवाज थी, सलील चौधरी का संगीत और गुलजार की लिखी रचना।
1: कैसे चुने सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

मोहम्मद रफी की आवाज से सजा ये गीत कैसे कहूं। इस फिल्म से अभी आपने सुना 1964 रिलीज फिल्म, सचिन देव बर्मन का संगीत, शकील बदायूं की लिखी रचना। जिंदगी तो बिल्कुल झूमेगी यदि हम जिंदगी को झूमवाने वाले काम करेंगे तभी। जी हाँ, वो ठीक है कि समय अपने हाथ में नहीं रहता, लेकिन कर्म तो अपने हाथ में होते ही है ना।

मोहम्मद रफी आशा भोसले की स्वरों से सजा। ये गीत अभी आपने सुना सच्चाई फिल्म से। 1969 रिलीज फिल्म शंकर जयकिशन का संगीत, राजेंद्र कृष्ण की लिखी रचना। साथियों, सावन की बहार इन दिनों चल रही है, झूलों का मौसम है, तीज का त्योहार भी आने ही वाला है। आइए याद करते हैं ये गीत, अवसर अनुकूल गीत, बहू बेगम फिल्म से।

0: रोशन की संगीत रचना से सजा ये गीत अभी आपने सुना बहू बेगम फिल्म से, जो रिलीज हुई थी वर्ष 1967 में। लता मंगेशकर आशा भोसले की आवाजों का सुंदर जादू था, साहिर लुधियानवी की लिखी रचना थी। और अब आलम यह है कि दिल की बात बताने का मन भी है और डर ये भी कि कहीं वो बात हमने कहीं कह दी, यानी अपनी सखी को कह दी, तो किसी को वो आगे ना बता दे। कुछ इसी तरह के भाव जज्बात से भरा सजा ये गीत आइए सुनते हैं।
1: दिल की बात बता दो। नहीं नहीं नहीं नहीं, नहीं।

मैं सुंदर हूँ इस फिल्म से ये नगमा अभी आपने सुना। 1971 रिलीज फिल्म, लता मंगेशकर की आवाज थी, शंकर जयकिशन की लिखी, शंकर जयकिशन का संगीत और आनंद बख्शी की लिखी रचना थी।

आशु भोसले और महेंद्र कपूर की आवाजों से सजा ये गीत आदमी और इंसान इस फिल्म से अभी आपने सुना। 1970 रिलीज ये फिल्म रवि का संगीत साहिर लुधियानवी की लिखी रचना। और अब सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं हम सभी ये।

लता मंगेशकर की आवाज से सजा ये गीत सत्यम शिवम सुंदरम फिल्म से अभी आपने सुना 1978 रिलीज ये फिल्म। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था, नरेंद्र शर्मा की लिखी रचना। और अब आज के अरुणिमा कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति के रूप में सज रही है ये रचना।

किशोर कुमार की आवाज से सजाई ये गीत अभी आपने सुना। फिल्म का नाम पिया का घर। 1972 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, आनंद बख्शी की लिखी रचना। इसी रचना के साथ ही आज का अरुणिमा कार्यक्रम अब समाप्त होता है। अपनी मित्र नीता अग्रवाल को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में अपने आवास पर राष्ट्रमंडल खेल 2026 के पदक विजेताओं से मुलाकात की। पदक विजेताओं ने प्रधानमंत्री के साथ बातचीत के दौरान खेलों से जुड़े अपने अनुभव साझा किए। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी खिलाड़ियों ने अपने शानदार प्रदर्शन से देश का मान बढ़ाया है और उनकी सफलता कई युवाओं को प्रेरित करेगी।
1: जो खेलेगा वो खिलेगा। ऑलवेज चीयर फॉर भारत। भारत माता की
2: जय।
1: भारत माता की
2: जय।
1: भारत माता की
2: जय।
0: इस अवसर पर युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मांडविया और युवा मामले और खेल राज्य मंत्री रक्षा निखिल खडसे मौजूद थे। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में 23 जुलाई से 2 अगस्त तक आयोजित हुए इन खेलों में भारत पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। भारतीय खिलाड़ियों ने विभिन्न खेलों में कुल 39 पदक जीते, जिनमें 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। हर घर

0: तिरंगा अभियान कल से शुरू हो गया है। 17 अगस्त तक चलने वाली इस अभियान का उद्देश्य देशवासियों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना है।
1: घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, रथ घर तिरंगा।
0: इस वर्ष ये अभियान राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ मनाया जा रहा है। देश भर में वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी होगा। दुनिया भर में 200 से अधिक भारतीय दूतावास, उच्चायोग और वाणिज्य दूतावास भी अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित करेंगे। दिल्ली मेट्रो रेल ने स्वतंत्रता की भावना का जश्न मनाने के लिए येलो लाइन पर हर घर तिरंगा थीम से सजी एक विशेष मेट्रो ट्रेन का अनावरण किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में डीएमआरसी ने बताया कि भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित सप्ताह भर चलने वाले कार्यक्रमों के तहत इस ट्रेन का अनावरण किया गया। निगम ने कहा कि इस वर्ष का हर घर तिरंगा अभियान भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। मणिपुर भी देश के बाकी हिस्सों की तरह हर घर तिरंगा अभियान में शामिल हुआ। इम्फाल पश्चिम जिले के सिंगजामेई में अपने घर से इस अभियान में शामिल हुए मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद ने लोगों से अपील की कि वो खुद को पहले भारतीय और फिर मणिपुरी माने। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने कहा है कि पीएम आवास योजना शहरी और दूसरे चरण की पीएम आवास योजना शहरी के अंतर्गत अब तक 1,25,00,000 से अधिक मकानों को मंजूरी दी जा चुकी है। इनमें से 1 करोड़ से ज्यादा मकान बनकर तैयार हो चुके हैं और लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं। झारखंड सरकार और प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच झारखंड लोक सेवा आयोग JPSC और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों की अधिकतर मांगों पर सहमति बन गई है। कल सरकार और छात्रों के बीच हुई वार्ता के बाद उन्होंने बताया कि कथित अनियमितताओं की ईडी जांच और आपराधिक मामलों की CID जांच कराई जाएगी। साथ ही 90 दिनों के भीतर आरोप पत्र दाखिल करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने की भी बात कही गई है। उत्तराखंड सरकार ने कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों के विकास के लिए 20 साल की उत्तराखंड कृषि कार्य योजना तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस योजना में राज्य के सभी 13 जिले शामिल होंगे। पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. शिवेंद्र कुमार कश्यप को इस परियोजना का समन्वयक नियुक्त किया गया है। इस कार्य योजना में 21 मुख्य विषय शामिल होंगे, जैसे कृषि, बागवानी, पशुपालन, वानिकी, जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता, पलायन और रोजगार पैदा करना। पहाड़ी और मैदानी इलाकों की खास स्थितियों के आधार पर अलग अलग रणनीतियां बनाई जाएंगी। भारतीय नौसेना और अमरीकी नौसेना का विस्फोटक आयुध निरोधक EOD अभ्यास कल से 14 अगस्त तक दक्षिणी नौसेना कमान कोची में आयोजित किया जाएगा। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस द्विपक्षीय अभ्यास का उद्देश्य दोनों नौसेनाओं की विशेषज्ञ गोताखोरी और EOD टीमों के बीच अंतर संचालन को बढ़ाना और पेशेवर सहयोग को मजबूत करना है। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आज और कल दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, असम, मेघालय, पूर्वी मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में तेज बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

की 5:11 और 12 सेकेंड। प्रस्तुत है कार्यक्रम भोर सुहानी। कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुप्रभात, मैं हूं आपकी मित्र नीता अग्रवाल। नवजीवन नव सुबह का शुभ आरंभ, सुहानी भोर का पदार्पण और साथ रंगों से सजी सपनों को साकार करने की हम सभी की पुरजोर कोशिश।

अनुराधा पौडवाल की आवाज से सजी ये भक्ति रचना अभी आपने सुनी। और अब हरियाला सावन आ गया है, बिल्कुल उत्साह के साथ, उमंग के साथ ढोल बजाता हुआ, हंसता हुआ, मुस्कुराता हुआ, हम सबको खुशी देता हुआ।

लता मंगेशकर की आवाजों से सजा ये गीत अभी आपने सुना दो बीघा जमीन फिल्म से 1953 रिलीज फिल्म सलिल चौधरी का संगीत शैलेंद्र की लिखी रचना

कल्याण जी आनंद जी का संगीत लिए ये रचना गुलशन बावरा की लिखी हुई थी। लता मंगेशकर महेंद्र कपूर की आवाजों का संगम था। फिल्म का नाम परिवार, जो रिलीज हुई थी वर्ष 1968 में।